ना समझ ही रहने दीजिए अब हमें, ना समझ ही रहने दीजिए अब हमें, इतना समझदार होकर भी क्या करना है। समझदारी के इस दौर में समझ में ही नहीं आता है जब कुछ, समझदारी के इस दौर में समझ में ही नहीं आता है जब कुछ, इससे तो हम ना समझ ही अच्छे हैं। 5:37 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी मेरे यानी अर्चित के साथ।

बनी रहने दीजिए कुछ ख्वाहिशें अधूरी ही सही, बनी रहने दीजिए कुछ ख्वाहिशें अधूरी ही सही, सारी पूरी हों ये जरूरी तो नहीं। सुकून ए जिंदगी पर ही ध्यान दीजिए सारा, सुकून ए जिंदगी पर ही ध्यान दीजिए सारा, क्योंकि ख्वाहिशों का कोई अंत नहीं।

0: कहाँ प्यार है तुमसे, वो जाना कहाँ प्यार है तुमसे।
1: हाँ हाँ,
2: एक बहुत ही प्यारा सा गीत अभी अभी आपने सुना, आसमान से आया फरिश्ता। 5:46 हो चुके हैं, अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम भोर सुहानी। लीजिए सुनिए इस प्रोग्राम का

0: ഈ ഗാനത്തോടുകൂടി ഇന്നത്തെ പുലർവട്ടം സമാപിക്കുന്നു. സമയം 7 മണി കഴിഞ്ഞ 59 മിനിറ്റും 55 സെക്കൻഡും. ഇനി 8 മണിക്ക് സമാചാർ പ്രഭാത്, തുടർന്ന് മോർണിംഗ് ന്യൂസ് ഡൽഹി റിലെ.
1: Catch the rain, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्रालयों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस से जुड़े बैंक खातों में वित्तीय अनियमितताओं के सिलसिले में कोलकाता में कई स्थानों पर छापेमारी की। होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों पर हमलों के बाद अमेरिका ने ईरान पर हमले किए। ईरानी तेल पर प्रतिबंधों में छूट भी वापस ली। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आतंकवाद से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोयो सुबियांतो के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंतर्गत नामित आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। एक रिपोर्ट।
4: दोनों नेताओं ने आतंकवाद और उग्रवाद की रोकथाम और इसका मुकाबला करने में सहयोग को और गहरा करने पर सहमति व्यक्त की। इसमें आतंकवाद के वित्त पोषण पर अंकुश लगाने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धन शोधन विरोधी और आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने वाले मानकों के कार्यान्वयन को मजबूत करने, आतंकवादी समूह द्वारा उभरती प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग को रोकने और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नफरत फैलाने से निपटने के उपाय शामिल है। उन्होंने आतंकवाद विरोधी सहयोग समझौता ज्ञापन के शीघ्र संपन्न होने का भी स्वागत की। इस पर जल्दी हस्ताक्षर होने का उम्मीद है। दोनों देश ने आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराधी का रोकथाम, साइबर सुरक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा उद्योग, समुद्र सुरक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में दोनों नेताओं ने विकसित भारत 2047 विजन और सहयोग बढ़ाने के लिए तीसरे भारत इंडोनेशिया सुरक्षा संवाद का स्वागत किया। इंडोनेशिया के इंडोनेशिया इमास 2045 एजेंडा के बीच समानताओं का भी उल्लेख किया।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। जकार्ता में इंडोनेशिया के सांसदों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने साझा सभ्यता

0: परंपरागत विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित द्विपक्षीय संबंधों के एक नए युग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि भारत इंडोनेशिया के साथ लोकतांत्रिक संबंध मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने भारत की विकास यात्रा और 2047 तक विकसित भारत तथा 2045 तक स्वर्णिम इंडोनेशिया की परिकल्पनाओं के बीच तालमेल का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने व्यापार, निवेश, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने का भी आह्वान किया।
1: यहाँ इंडोनेशिया में आप एमास 2045 के महत्वाकांक्षी विजन पर चल रहे हैं और भारत में हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने इन लक्ष्यों को हासिल करने में हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। हम दुनिया की सबसे यूथफुल सोसाइटीज हैं। हम दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है। हम दोनों मेजर मैरिटाइम पावर्स हैं। हम ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्यकार्ता में प्रम्बानन मंदिर का दौरा करेंगे। 9वीं शताब्दी में निर्मित प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है और दक्षिण पूर्व एशिया की उत्कृष्ट स्थापत्य कलाकृतियों में से एक है। मूल रूप से इस परिसर में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित 240 छोटे छोटे मंदिर हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री अपनी तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने तीन दिन के दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी प्रवासी भारतीयों की एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री माननीय एंथनी अल्बनीज के बीच होने वाली द्विपक्षीय वार्ता से दोनों देशों के संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक सहयोग जैसे कई प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की संभावना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2025 में 33 अरब अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है। अब दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए दोनों देशों की साझेदारी अब डिजिटल और उभरती प्रौद्योगिकियों पर भी केंद्रित हो रही है। इसका प्रमुख उदाहरण एयरट्रक द्वारा भारत में एआई तैयार डेटा सेंटरों के विकास के लिए 30 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता है। वही 4.5 अरब अमरीकी डॉलर की प्रोजेक्ट सेरेस उर्वरक परियोजना मेक इन इंडिया और मेक इन ऑस्ट्रेलिया के सफल तालमेल का सशक्त उदाहरण है। मेलबर्न से सुहास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं नवीन सक्सेना।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के विभिन्न क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए कल उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र की अध्यक्षता में ये बैठक सेवा तीर्थ में हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
2: डॉक्टर पीके मिश्रा ने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मॉनसून या विलंबित मॉनसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि पशु चारे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए जाएं। संवेदनशील जिलों में पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता पर भी श्री मिश्रा ने बल दिया। बैठक के दौरान मौसम

0: विभाग के अधिकारियों ने कल तक जून और जुलाई में हुई कुल वर्षा की जानकारी दी। कृषि मंत्रालय के सचिव ने खरीफ मौसम के दौरान अल नीनो के संभावित प्रभाव से निपटने की तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जिलों में स्थित कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए अल नीनो के जोखिमों के प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की हैं। संवेदनशील राज्यों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड कवरेज के लिए अभियान शुरू किए गए हैं और कृषि वित्तीय सेवा और सहकारिता विभागों को समयबद्ध तरीके से अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने का सुझाव दिया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने लू, उच्च आर्द्रता और डेंगू के प्रकोप की निगरानी के लिए सलाह जारी की है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने चावल, गेहूं और दालों के खुदरा मूल्यों और बफर स्टॉक की पर्याप्तता की स्थिति की जानकारी दी। ग्रामीण विकास विभाग ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन के तहत पहली जुलाई से शुरू किए गए कार्यों की जानकारी दी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से संबंधित वित्तीय लेनदेन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर छापेमारी की है। एक रिपोर्ट।
2: प्रवर्तन निदेशालय की शुरुआती जांच के अनुसार संदिग्ध गतिविधियों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के जरिए से 1.5 करोड़ रुपए से अधिक का हस्तांतरण किया गया। ईडी ने बताया कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच तृणमूल कांग्रेस के खातों से निजी विमानन कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई को लगभग 160 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। निजी कंपनी ने 2023 से इस वर्ष के बीच एक अन्य नवगठित संबद्ध इकाई को 82 करोड़ से अधिक का हस्तांतरण भी किया। ईडी ने कहा कि एम्ब्रियर लेगेसी 600 विमान और अगस्ता 109 SP हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए निजी कंपनी की एक संबद्ध इकाई को बड़ी राशि हस्तांतरित की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन खरीदों के लिए 112 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ईडी ने आरोप लगाया कि अगस्ता हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए कुछ विदेशी धन का भी उपयोग किया गया, जबकि अधिकांश धनराशि सीधे तृणमूल कांग्रेस के खातों से प्राप्त की गई। मामले की जांच जारी है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: अमरीका ने ईरान पर फिर हमले किए हैं। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में 3 व्यापारिक जहाजों पर ईरान की कार्रवाई के बाद किए गए। अमरीका ने कहा कि होर्मुज में ईरान का वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने के बाद ये हमले किए गए हैं।
3: अमरीका के एक अधिकारी ने बताया कि अमरीका की सेना ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय निगरानी प्रणालियों, मिसाइलों और ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों को भी निशाना बना रही है। ईरान में बंदरगाह सुविधाओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। ईरान के उपविदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा कि अमरीका के ये ताजा हमले समझौते का उल्लंघन है। अमरीका ने शत्रुता समाप्त करने के लिए हुए अंतरिम समझौते के तहत ईरानी तेल की बिक्री को अधिकृत करने वाला लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। एक अमरीकी अधिकारी ने कहा कि लाइसेंस इसलिए रद्द किया गया क्योंकि होर्मुज में ईरान की कार्यवाही अस्वीकार थी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने लाइसेंस रद्द करने के अमेरिका के कदम की निंदा करते हुए कहा कि यह अंतरिम समझौते का उल्लंघन है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अतिरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सके। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। अंतिम 16 के एक अन्य मैच में अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से हरा दिया। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में पहुंचने की संभावना व्यक्त की है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया की संसद में संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता के अनुसार विकास का मार्ग अपनाता है भारत, विस्तारवाद का नहीं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, इंडोनेशिया के तर्कश में सजेंगे भारत के अस्त्र, ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलें खरीदने का समझौता हुआ। देशबंधु के अनुसार मोदी को मिला इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान। हिंदुस्तान ने साख का सवाल शीर्षक से संपादकीय में दिया है कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्र की विदाई देर से ही सही, पर एक दुरुस्त फैसला है। जो घटित हो चुका है उसका फैसला अब कानून और अदालत को करना है, मगर जो आगत है उसे निष्कलुष रखने का दायित्व ट्रस्ट के कंधों पर ही रहेगा। दैनिक जागरण का शीर्षक है, अहमदाबाद सिलसिलेवार बम धमाकों के 38 दोषियों की मौत की सजा बरकरार। गुजरात हाईकोर्ट ने विशेष कोर्ट का फैसला सही ठहराया। उम्र कैद पाए दोषियों को भी राहत नहीं। पंजाब केसरी के अनुसार गृह मंत्री

0: अमित शाह ने किया। 70 लाख पौधारोपण का आगाज, दिल्ली बनेगी और हरी भरी। 300 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत गृह मंत्री ने किया दिल्ली रिज के पुनर्जीवन का शुभारंभ। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, क्रायोजेनिक इंजन का इसरो ने सफल परीक्षण किया, गगनयान में भी होगा इस्तेमाल। परीक्षण का उद्देश्य इंजन की उड़ान के लिए पूरी तरह तैयारी का पता लगाना था। अमर उजाला की सुर्खी है, भारी बारिश, दिल्ली जयपुर हाईवे पर सड़क धंसी, 12 किलोमीटर तक लंबा जाम, दोपहर 11:30 बजे 47.5 डिग्री जैसी तपिश। आसमान से राहत बरसते ही शिमला की तरह सुहानी होती गई दिल्ली की शाम।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्रालयों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। इंडिया एंड इंडोनेशिया स्ट्रांगली कंडेम टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड कॉल फॉर डिसाइसिव एंड कोऑर्डिनेटेड इंटरनेशनल एफर्ट्स टू कॉम्बैट दिस मेनेस। Prime Minister Narendra Modi becomes first Indian Prime Minister to address Indonesian Parliament, calls for deeper strategic partnership between the two countries. Prime Minister's office reviews El Nino impact, asks central ministries to work with states on preparedness measures. ED conducts searches at multiple locations in Kolkata in connection with financial irregularities involving bank accounts linked to Trinamool Congress. US launches strikes against Iran after attacks on vessels in Strait of Hormuz, also revokes its sanctions relief on Iranian oil. And in football, Argentina and Switzerland enter quarterfinals of FIFA World Cup. India and Indonesia have strongly condemned terrorism in all its forms and called for decisive, coordinated international efforts to combat the threat in accordance with international law. In a joint statement issued after bilateral talks between Prime Minister Narendra Modi and Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta, the two leaders urged action against globally proscribed terrorist and terrorist organizations, including those designated under the UN Security Council's 1267 Sanctions Committee. We have more from a correspondent.
3: The two leaders agreed to deepen cooperation in preventing and countering terrorism and violent extremism conducive to terrorism. The cooperation will include measures to curb terror financing, strengthen implementation of internationally agreed anti-money laundering and countering the financing of terrorism standards, prevent the misuse of emerging technologies by terrorist groups and tackle online radicalization and recruitment through digital platforms. Reaffirming a zero-tolerance approach to terrorism, the two sides pledged to continue disrupting terror financing networks and enhance bilateral and multilateral cooperation, including through the United Nations and the Financial Action Taken Force, FATF. Recognizing the links between terrorism and transnational organized crime, India and Indonesia agreed to strengthen information sharing and exchange of best practices in line with their domestic laws and international obligations. They also welcomed the early conclusion of Memorandum of Understanding on Counter-Terrorism Cooperation, which is expected to be signed soon. The two countries welcome the planned third India-Indonesia Security Dialogue as a platform to expand cooperation in counter-terrorism, transnational crime, cybersecurity, emerging technologies, defense industry, maritime security and space. Both leaders also agreed to explore greater cooperation in the cyber domain through policy dialogue, capacity building and exchange of expertise and best practices. Sandeep Dashgupta, Akashvani News, Jakarta.
2: Prime Minister Narendra Modi has become the first Indian Prime Minister to address the Parliament of Indonesia. Addressing Indonesian lawmakers in Jakarta, Mr. Modi called for a new era in bilateral relations anchored in shared civilizational heritage, democracy.

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी जितनी सादी होगी परेशानी उतनी ही आधी होगी।
3: वाह क्या बात है, जिंदगी जितनी सादी होगी परेशानी उतनी ही आधी होगी। आगे लिखते हैं,
2: योग जरूर करें और वक्त आने पर एक दूसरे का सहयोग जरूर करें।
3: वाह ये भी एक बड़ी खूबसूरत कविता बन गई, योग जरूर करें और वक्त आने पर एक दूसरे का सहयोग करें। बहुत सुंदर विचार भेजा आपने, धन्यवाद स्वीकार कीजिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेड़था बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी।
3: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
2: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
3: और बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय के साथ साथ बेबी किट्टू ने लिखा है, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी सादर नमस्कार।
2: हम उमंग कार्यक्रम के नियमित श्रोता हैं, सोमवार से शुक्रवार तक एक एक जानकारी सुनते हैं, समीक्षा भी भेजते हैं। गुजरे सप्ताह आपने 15 जून को केवल नाम पढ़ा लेकिन समीक्षा नहीं पढ़ी।
3: आपके संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि आगे से हम जरूर इस बात का खास ख्याल रखेंगे
2: जी।
3: अगला संदेश हमें मिला है राजा जी नगर बेंगलोर से NR प्रसाद और अखिला प्रसाद जी का।
2: आप सबके संदेशों के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी आपकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए मैं।
3: श्रोताओं इन दिनों हम बात कर रहे हैं पेड़ पौधों के रोचक संसार की
2: जी।
3: कल हमने जाना था कि पेड़ पौधे आपस में किस प्रकार से संचार करते हैं। आज हम

0: जानेंगे पेड़ों के बारे में एक और रोचक बात
1: जी।
0: तो विमलेश जी, आपने कल बातचीत में प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी सर जगदीश चंद्र बोस के बारे में कुछ बताया था।
1: जी अजीत जी, मैं याद कर रही थी उनके बचपन की एक घटना को। ऐसा कहते हैं कि जब वे बच्चे थे तो एक शाम वे गेंद से खेल रहे थे, गेंद पास की झाड़ियों में फंस गई थी।
0: बालक जगदीश चंद्र बोस ने एक डंडा लिया और लगे झाड़ी को हिलाने।
1: जी।
0: वे बहुत प्रयास करते रहे लेकिन गेंद झाड़ी में उलझी रही।
1: जी।
0: शाम ढलने लगी थी, तभी उनकी माँ ने उन्हें बुलाया और कहा, बेटा पौधों को तंग ना करो, ये उनके सोने का समय है।
1: श्रोताओ, यही वो समय था जब बालक जगदीश चंद्र बोस के मन में वैज्ञानिक चेतना जागी। तो श्रोताओ, आज हम चर्चा करेंगे कि क्या पेड़ पौधे भी सोते हैं।
0: श्रोताओ, इसका उत्तर है जी हाँ, लेकिन हमारी तरह नहीं। वैज्ञानिकों ने शोध करके पाया है कि रात में पेड़ों की गतिविधियां धीमी हो जाती हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की गति बहुत कम हो जाती है।
1: पानी और पोषक तत्वों का प्रवाह भी दिन के मुकाबले कम हो जाता है। पेड़ों की स्कैनिंग से ये भी पाया गया है, रात के समय कुछ पेड़ों की शाखाएं और पत्तियां 5 से 10 सेंटीमीटर तक नीचे झुक जाती हैं और सूर्योदय के बाद फिर से ऊपर उठ जाती हैं।
0: अरे वाह, ये तो बड़ी रोचक बात है। यही कारण है कि ये कहा जाता है कि पेड़ भी सोते हैं। विमलेश जी, आजकल सुना जाने लगा है कि पेड़ों पर रात को तीव्र प्रकाश वाले बल्ब नहीं जलाने चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है?
1: जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रात में पेड़ों पर बल्ब नहीं जलाने चाहिए।
0: क्यों?
1: इसके कई कारण हैं। पहली बात, इससे पेड़ों की जैविक घड़ी प्रभावित होती है। पेड़ रात और दिन के चक्र के अनुसार काम करते हैं। तेज रोशनी में उन्हें प्राकृतिक रूप से रात होने का संकेत नहीं मिल पाता।
0: जी विमलेश जी, श्रोताओ एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि कुछ पेड़ पौधों में फूल आने, पत्तियों के झड़ने और निकलने की प्रक्रिया दिन रात की अवधि पर ही निर्भर करती है, जबकि कृत्रिम प्रकाश इन प्रक्रियाओं को बाधित करता है।
1: एक और बात, कृत्रिम प्रकाश से पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों और परागण करने वाले कीटों की दिनचर्या भी प्रभावित होती है।
0: जी।
1: सजावट या सुरक्षा कारणों से भी कभी कभार सीमित समय के लिए बत्तियां जलाई जा सकती हैं, लेकिन अच्छा यही है कि जहां तक हो सके उन्हें प्राकृतिक पर्यावरण में ही रहने दिया जाए।
0: जी, तो श्रोताओ ये थी हमारी आज की रोचक जानकारी, आशा है कि आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि आई है तो लिख भेजिए अपना संदेश। और अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए?
0: श्रोताओ आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो आइए आप सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है खेल संध्या।
1: ये कार्यक्रम हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है जिसे एक गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। गीत में बच्चे विशेषकर भारत के पारंपरिक खेलों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्हें खेलने कूदने में कितना आनंद आता है।
0: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
2: संध्या को हम खेलने जाते,
0: मित्रों संग आनंद मनाते,
2: मित्रों संग आनंद मनाते,
0: कभी दौड़ना और उछलना,
2: कभी दौड़ना और उछलना,
0: कभी गेंद के खेल खेलना,
2: कभी गेंद के खेल खेलना,
0: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
2: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
0: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
2: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
0: गिल्ली डंडा सबको भाता,
2: गिल्ली डंडा सबको भाता,
0: सतोलिया भी मजा दिलाता,
2: सतोलिया भी मजा दिलाता,
0: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
2: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
0: या हंस हंस के बातें करना,
2: या हंस हंस के बातें करना,
0: जब अंधेरा होने लगता,
2: जब अंधेरा होने लगता,
0: सबको कुछ डर लगने लगता,
2: सबको कुछ डर लगने लगता,
0: तब हम घर को वापस आते,
2: तब हम घर को वापस आते,
0: कल खेलेंगे यह कह जाते,
2: कल खेलेंगे यह कह जाते।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब

तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत, अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। खेल संध्या, अभी आपने सुना ये प्यारा कार्यक्रम।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी।
1: इस कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों और उनकी परंपराओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है और बताया गया है कि किस प्रकार से उन्होंने आज भी अपनी संस्कृति को बनाए रखा है।
0: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी।

0: कहते हैं अरबों वर्ष पहले पृथ्वी पर जमीन का एक विशाल टुकड़ा था। किसी कारणवश बड़ा भयंकर धमाका हुआ। और जमीन के टुकड़े अलग अलग छिटक गए। उसी से बने द्वीप और महाद्वीप।
1: ऐसा ही एक महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया।

0: ये भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसके पश्चिम और दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में प्रशांत महासागर है और उत्तर में टिमोर और अराफुरा सागर है।
1: क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया भारत से दुगने से भी अधिक है, लेकिन भारत की जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से लगभग 6 गुना अधिक है।

0: ऑस्ट्रेलिया का अधिकतर भाग सूखा और गर्म है। हमारे देश की गंगा नदी में जितना जल है, ऑस्ट्रेलिया की सारी नदियों में कुल मिलाकर उसका आधा जल भी नहीं है।
1: एक बात और, दक्षिण गोलार्ध में होने के कारण ऑस्ट्रेलिया के मौसम उत्तरी गोलार्ध में स्थित देशों से उल्टे होते हैं। उदाहरण के लिए, जब भारत में गर्मियां होती हैं तो ऑस्ट्रेलिया में जाड़ा होता है, और जब भारत में जाड़ा होता है तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का मौसम आ जाता है।
0: दुनिया के इस सबसे छोटे महाद्वीप की खोज सन 1770 में एक अंग्रेज नाविक कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। इसका मतलब ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया की खोज से पहले वहाँ लोग नहीं रहते थे, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी तो पाषाण युग से रहते चले आ रहे हैं। और शायद तुम्हें ये जानकर हैरानी हो कि उनमें से कुछ के जीने के तरीके में आज भी कोई अंतर नहीं आया।

0: मतलब ये कि आज भी ये शिकार करके अपना पेट पालते हैं। इन्होंने न खेती करना सीखा न पशु पालना। पशु के नाम पर डिंगो नाम का एक कुत्ता पालते हैं जो शिकार के समय भी बराबर इनके साथ रहता है।
1: शिकार करने के लिए ये लोग आज भी पत्थर और लकड़ी के हथियारों का प्रयोग करते हैं। इनका एक हथियार है वो मेरा, जिसकी मदद से ये अपने भाले को 130 मीटर की दूरी तक फेंक सकते हैं।
0: एक और हथियार होता है बूमरैंग, जो घुमावदार होता है। इस हथियार की विशेषता ये है कि अगर शिकारी इसे चतुराई से फेंके और किसी कारणवश वह निशाने पर न लगे तो शिकारी के पास वापस आ जाता है।
1: ऑस्ट्रेलिया के ये आदिवासी सभी तरह के पशु पक्षियों का शिकार करते हैं, जैसे एम्यू पक्षी, सांप, छिपकली, कछुआ, कंगारू आदि।
0: कंगारू, इस शब्द की एक रोचक कहानी है। अंग्रेजों ने जब पहली बार इस विचित्र जीव को देखा तो आदिवासियों से इसका नाम पूछा। आदिवासी अंग्रेजी तो समझते नहीं थे, बस इतना समझ पाए कि गोरे लोग कुछ पूछना चाह रहे हैं। उन्होंने अपनी भाषा में कहा, कंगारू यानी तुम क्या जानना चाहते हो। अंग्रेज समझे कि कंगारू इस विचित्र जीव का नाम है, बस तभी से उसका नाम कंगारू पड़ गया।
1: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों के बारे में इतना जान लेने के बाद ये जानने की भी इच्छा होती है कि शताब्दियां बीत जाने पर भी जिन लोगों की जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं आया वो देखने में कैसे लगते हैं।
0: इनका रंग गहरा होता है, कद सामान्य, शरीर छरहरा लेकिन गठा हुआ, आंखें छोटी और भीतर को धसी हुई, नाक चौड़ी और चपटी, जबड़ा कुछ बाहर निकला हुआ और बाल घुंघराले।
1: हमारी दृष्टि से भले ही ये लोग पिछड़े हों, लेकिन शारीरिक और बौद्धिक दृष्टि से ये पीछे नहीं। इनकी भाषाएं काफी विकसित हैं और लगभग 500 बोलियां प्रचलित हैं। हाँ, ये बात और है कि इनके यहाँ पढ़ाई लिखाई की कोई व्यवस्था नहीं।
0: तुम सोच रहे होगे कि क्या मजे की बात है, आदिवासी बच्चों को स्कूल नहीं जाना पड़ता, न होमवर्क करना पड़ता है और न ही परीक्षा देनी पड़ती है, बस सारा दिन मौज मस्ती करो, खेलो कूदो।
1: हाँ, ये तो है। आदिवासी बच्चों ने अपने मनोरंजन के लिए तरह तरह के खेल बना रखे हैं।
0: ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों का पारिवारिक संगठन बहुत मजबूत होता है। ये सब कुछ मिल बांट कर खाते हैं और प्रेम से रहते हैं। इनके यहाँ छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं होता, सभी बराबर माने जाते हैं। हाँ, बड़े बूढ़ों और अनुभवी लोगों का आदर अवश्य किया जाता है।
1: इन्हीं बड़े बूढ़ों पर पवित्र स्थलों की जिम्मेदारी होती है। यही लोग धार्मिक अनुष्ठान करवाते हैं और नौजवानों को अपने रीति रिवाजों के बारे में बताते हैं। ऐसे अवसरों पर नृत्य और संगीत अवश्य होता है।
0: हाँ, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। स्त्री पुरुष अपने शरीर पर सफेद मिट्टी और गेरू से टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींचते हैं, आकृतियां बनाते हैं, माथे पर रस्सी की पट्टियां बांधते हैं और उनमें पक्षियों के रंग बिरंगे पंख खोस लेते हैं, और फिर होता है सामूहिक नृत्य।
1: ऑस्ट्रेलिया के ये सीधे साधे आदिवासी हंसते खेलते अपना जीवन बसर कर रहे थे, लेकिन फिर अंग्रेजों को इस अद्भुत महाद्वीप का पता चल गया। और उन्होंने वहां अपनी बस्तियां बसानी शुरू कर दी।
0: अंग्रेजों के अलावा

0: अन्य यूरोपीय लोग भी यहां आए। पहले पहल अंग्रेज समुद्र तट पर आकर बसे, फिर उन्होंने अंदर की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे अंग्रेज आगे बढ़े, वैसे वैसे आदिवासी अंदर के दुर्गम क्षेत्रों में सिमटते गए। बेचारे क्या करते, अपने सीधे साधे हथियारों से अंग्रेजों का मुकाबला थोड़े ही कर सकते थे।
1: अंग्रेजों ने आदिवासी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और वहां खेती बाड़ी शुरू कर दी। कहीं कहीं

0: 50 शीशे, 20 जोड़ी कपड़े और 2 टन आटा।
1: ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी छोर पर एक छोटा सा द्वीप है, तस्मानिया। ये भी ऑस्ट्रेलिया का एक हिस्सा है। यहाँ के आदिवासियों को भी अंग्रेजों ने उसी तरह धकेलना शुरू किया। अंग्रेज उन्हें खाना कपड़ा तो देते थे, लेकिन बेचारे अंग्रेजों की उतरन पहनकर भी ठंड से नहीं बच पाए। सन 1847 तक इनकी संख्या 2000 से घटकर केवल 47 रह गई और सन 1869 तक आते आते आखिरी आदिवासी ने भी दम तोड़ दिया। इस तरह पूरी की पूरी एक जाति लुप्त हो गई।
0: आज पशु पक्षियों की दुर्लभ जातियों के संरक्षण को बहुत महत्व दिया जा रहा है। उनके शिकार पर रोक लगा दी गई है, उनके लिए अभयारण्य बनाए जा रहे हैं। लेकिन तस्मानिया के आदिवासियों के बारे में तब किसी ने भी नहीं सोचा।
1: ऑस्ट्रेलिया के इन आदिवासियों की दशा में काफी सुधार हुआ है। उन्हें अब समानता के अधिकार मिल गए हैं। वो वोट दे सकते हैं, अपने प्रतिनिधि को देश की संसद में भेज सकते हैं।
0: यही नहीं, आदिवासियों को भूमि के अधिकार भी मिले हैं। इनके लिए कुछ आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं जहां किसी और का कोई दखल नहीं। ये लोग अपनी मर्जी से जैसे चाहें रह सकते हैं।
1: उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में अर्नहैम लैंड नाम का एक ऐसा ही आरक्षित क्षेत्र है। इसमें ककाटू नाम का एक राष्ट्रीय पार्क भी बनाया गया है। सन 1988 में इस राष्ट्रीय पार्क की फिल्म बनाने के लिए एक अमरीकी दंपति वहां जाकर महीनों रहे थे।
2: हम लोग आपके इस ककाटू पार्क की फिल्म बनाने आए हैं और उसके लिए पूरे परिवेश को अच्छी तरह जानना समझना बहुत जरूरी है।
3: तब तो आप भी हम गागुजू आदिवासियों जैसे ही हैं। हम लोग अपने आप को प्रकृति का एक हिस्सा मानते हैं।
4: लेकिन मिस्टर निजी, मनुष्य तो अपने को प्रकृति का मालिक मानता है।
3: नहीं नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, नहीं तो वन देवी नाराज हो जाएंगी। वन देवी ने समुद्र से निकलकर जमीन बनाई, पेड़ पौधे बनाए, जीव जंतु बनाए, मनुष्य को जन्म दिया और फिर वो भी इन्हीं में समा गए।
2: अच्छा, तो ये सब वन देवी ने किया?
3: यही नहीं, हमारी मिमी देवी ने हमें शिकार करना सिखाया और चित्र बनाना सिखाया।
4: कैसे चित्र?
3: जीव जंतुओं के चित्र, आदमी के चित्र।
2: क्या आप हमें ऐसे कुछ चित्र दिखा सकते हैं?
3: क्यों नहीं, अभी चलिए।
2: चलिए। देखो वेरिंडा, ये अजगर का चित्र।
4: अरे, इसमें तो अजगर की हड्डियों का ढांचा तक दिख रहा है, जैसे ये कोई एक्सरे फोटो हो।
2: और ये देखो, ये गुफा की दीवार पर गेरू से बनी ये मछली।
4: इधर ये कछुए, मेंढक, कंगारू और ये प्लेटिपस के चित्र भी हैं। और ये देखो, आदिवासी का ये चित्र।
2: मिस्टर नीर जी, क्या आप लोग अब भी ऐसे चित्र बनाते हैं?
3: गुफाओं में तो नहीं, हाँ पेड़ों की छाल पर जरूर बनाते हैं। आप कल हमारे कबीले में आइए, मैं आपको अपने भाई से मिलवाऊंगा, वो बहुत अच्छे चित्र बनाता है।
2: ठीक है, कल सुबह हम वहां आएंगे, अभी इन चित्रों की फिल्म तो उतार लें। गुड मॉर्निंग मिस्टर नीट जी।
3: गुड मॉर्निंग। आइए आइए आइए।
2: हमारे आने से आपको कोई असुविधा तो नहीं हुई?
3: जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। ये मेरा भाई है, इल्किर।
2: अच्छा अच्छा।
3: ये आपकी भाषा नहीं बोल सकता, लेकिन आपको चित्र दिखाएगा। कल इसने ये छाल उतारी थी चित्र बनाने के लिए, आप इसे चित्र बनाते देखना चाहते हैं?
4: ये तो बहुत अच्छा होगा, फिर हम उसकी फिल्म भी उतार सकते हैं।
3: जी।
2: अरे वाह, ये तो बड़ी तेजी से हाथ चला रहे हैं। देखो वेलिंडा, इनकी कोई गलती भी नहीं हुई और देखो ना, कुछ मिटाना भी नहीं पड़ा।
4: वाकई कमाल है।
3: अभ्यास से गलतियां नहीं होती, हमारे बनाए चित्र तो अब दुनिया भर में बिकते हैं।
2: सचमुच?
4: स्टेन, एक चित्र हम भी खरीद लें?
2: हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। वो अजगर वाला चित्र बड़ा आकर्षक है।

0: लीजिए, ये आपका हुआ।
1: इसकी कीमत?
0: कीमत नहीं लूंगा, हम गगुज्जू आदिवासियों की तरफ से आपको भेंट है।
2: सच?
1: धन्यवाद।
3: ऑस्ट्रेलिया के ये आदिवासी अच्छे चित्रकार तो हैं ही, आज उन्होंने अन्य क्षेत्रों में भी अपना स्थान बना लिया है। वो देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे हैं।
4: लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें ये आधुनिकीकरण पचता नहीं, वो अपनी जीवन पद्धति नहीं बदलना चाहते, और क्योंकि अब उन्हें भूमि के अधिकार मिल गए हैं इसलिए वो अपने क्षेत्र में अपने ढंग से जी सकते हैं। एक तरह से अच्छा भी है, आज हम चाहें तो पाषाण युग की जीवन शैली को प्रत्यक्ष देख तो सकते हैं।
5: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी, अभी आपने सुना यह कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
5: नमस्कार, नमस्कार।

0: अयच्छत्। श्रीशाहेन महाराष्ट्र राज्ये भीषण अतिवृष्ट्याः जलप्लावनस्य च स्थितेः समीक्षां कर्तुं महाराष्ट्रस्य मुख्यमन्त्रिणा देवेन्द्र फडणवीसेन सह विशेष चर्चा अकारी। संवादावधौ गृहमन्त्रिणा मुख्यमन्त्रिणं प्रति संकटकाले महाराष्ट्र सर्वकारस्य सहयोगार्थं केन्द्रीय प्रशासनात् सर्वविध साहाय्य प्रदानस्य प्रतिश्रुतिः अभिव्यक्ता। अनेन सहैव गृहमन्त्रिणा गुजरात राज्ये अतिवृष्ट्या जल अवरोध स्थिति सन्दर्भे गुजरातस्य मुख्यमन्त्रिणा भूपेन्द्र पटेलेन साकमपि मन्त्रणा कृता। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चल दूरभाषीय तंत्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य देशस्य मध्यम एवं पूर्वीय भागेषु अतिवृष्टेः मेघगर्जनस्य च कृते ऑरेंज अलर्ट इति नारंगवर्णीया संचेतना प्रसारिता। अनेन सहैव ऋतु विभागेन जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेशेष्वपि अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं विहितम्। विभागेन अनेन संसूचितं यत् आगामिषु द्वित्रिदिनेषु प्रावृट् उत्तर अरब सागरस्य अवशिष्टेषु क्षेत्रेषु तथा च राजस्थान, हरियाणा, पंजाब प्रान्तानां शिष्टेषु भूभागेषु अग्रे प्रवर्धमानः सन् सम्पूर्णे देशे पूर्णतः व्याप्तो भविष्यति। अमेरिका राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः उदघोषयत् यत् ईरान देशेन सह सैन्य संघर्षं निर्वापयितुं हस्ताक्षरितं सन्धिज्ञापनं सम्प्रति समाप्तिपदं सम्प्राप्तो विद्यते। तेन अग्रे प्रतिपादितं यत् अमेरिका सम्प्रति तेहरान प्रशासनेन सह संभाषणं कर्तुं नैव वांछति। राष्ट्रपतिः ट्रम्पस्य इदं वक्तव्यं तुर्की देशस्य राजधान्याम् अंकारा नगरे आयोजिते नाटो शिखर सम्मेलनस्य वार्ताहर सम्मेलने आगतम्। एषः घटनाक्रमः होर्मुज़ जलपोते त्रिषु तैलग्राहक पोतेषु अस्त्रप्रहारेण संजातस्य विवादस्य पश्चात् अमेरिका ईरान देशयोः मध्ये प्रवृत्तस्य प्रत्यक्ष सैन्य आक्रमणस्य परिणामो वर्तते। यद्यपि ईरानेन अस्य आक्रमणस्य उत्तरदायित्वं प्रत्यक्षतया नैव अंगीकृतम्। अद्य भारतीय शेयर विपणौ महती विक्रय प्रतिस्पर्धा दृष्टा, यस्य प्रभावात् सेंसेक्स निफ्टी इत्येतौ उभावपि प्रमुख सूचकांकौ शत प्रतिशतं सार्ध द्वि प्रतिशतात्मिका अपचितिः अभवत्। जम्मू कश्मीर प्रशासनेन अद्य श्री अमरनाथ जी यात्रामुद्दिश्य एका नवीना निर्देशिका प्रसारिता, यस्यां सर्वैः तीर्थयात्रिभिः पंजीकरण प्रक्रियायाः अथ सुरक्षा मार्गदर्शिकानां निष्ठापूर्वकं दृढतापूर्वकं च पालनं कर्तुं समादिष्टम्। आकाशवाण्याः जम्मू वार्ताहरैः विज्ञापितं यत् सर्वोच्च न्यायालयस्य निर्देशानुसारं निर्धारिता यात्रिणां प्रतिदिनस्य संख्यासीमा सम्प्रत्यपि पूर्णतो प्रवृत्ता वर्तते। श्रद्धालवः परामृष्टाः यत् यात्रा प्रारम्भात् पूर्वमेव अग्रिम पञ्जीकरणं करणीयम्, अथ अनुमतिपत्रे उल्लिखिते दिनाङ्के एव यात्रा आरम्भणीया। प्रशासनेन स्पष्टीकृतं यत् अनुपदमेव पञ्जीकरणस्य सुविधा अत्यन्तं सीमित संख्यासु एव उपलब्धा वर्तते। फीफा विश्वकप फुटबॉल प्रतिस्पर्धायां फ्रांस, मोरक्को, नॉर्वे, इंग्लैंड, स्पेन, बेल्जियम, अर्जेंटीना, स्विट्जरलैंड देशैः राउंड ऑफ 16 इत्याख्ये द्वंद्वे विजित्य अंतिमाष्टमेषु स्वस्थानं सुरक्षितम्। शुक्रवासरे तावत् प्रथमे प्रागुपान्त्यचक्रे रात्रौ सार्धैकवादने फ्रांस देशस्य स्पर्धा मोरक्को देशेन सह भविष्यति इति वार्ताः।
1: इनि प्रादेशिक वार्तकൾ
2: आकाशवाणी। നമസ്കാരം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് കൃഷ്ണ പ്രകൃതി. പ്രധാന വാർത്തകൾ. ഇന്തോനേഷ്യൻ പര്യടനം പൂർത്തിയാക്കി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് തിരിച്ചു.

0: ചലച്ചിത്ര ഗാനങ്ങൾ ഇനി 10:30 കേൾക്കാം. സമയം 8 മണി കഴിഞ്ഞ് 44:50. അല്പസമയത്തിനകം സമാചാർ സന്ധ്യ, തുടർന്ന് ന്യൂസ് അറ്റ് 9 ഡൽഹി റിലേ.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा. मुख्य समाचार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे. भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया. कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मॉनसून में सुधार से राहत मिली है, जुलाई में बारिश और तेज होने से खरीफ की बुआई में और तेजी आएगी. केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्ट्यूक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची. और अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे. हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया की मंत्री क्लेयर ओ'नील ने प्रधानमंत्री की अगवानी की. उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया. मेलबर्न में सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया.

0: ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। दोनों वाद्य यंत्रों की सुर और ताल ने भारत और ऑस्ट्रेलिया की सांस्कृतिक साझेदारी को सजीव रूप में प्रस्तुत किया। इसके बाद मेलबर्न की प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना संचिता ओबरोल के नेतृत्व में कथक नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने एआर रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा भी लिया। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
2: योग्यकार्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत के सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रबोवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक आतंकवाद की स्थिति पर विचार विमर्श किया और कट्टरपंथ आतंकवाद के वित्त पोषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने आज ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। रॉकेट का परीक्षण निर्धारित न्यूनतम 60 किलोमीटर की दूरी के लिए किया गया। पिनाका को आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला के सहयोग से डिजाइन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, सेना और उद्योग जगत को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट के स्वदेशी डिजाइन और विकास क्षमता में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है, जिससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है। नई दिल्ली में अल नीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री चौहान ने कहा कि जून में 33%

0: प्रतिशत वर्षा की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई में ये घटकर 24% रह गई है।
1: जुलाई की अच्छी बारिश से बोनी की संभावनाएं बढ़ गई है। अब बोनी और तेजी से होगी। कल तक 350,85,000 हेक्टर में बोनी हुई है। मानसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन और कपास पर थोड़ा प्रतिकूल बोनी पर प्रभाव पड़ा है। अब किसानों को यह सलाह दी जा रही है कि इनकी जगह मक्का, बाजरा और मूंग जैसी फसल जो कम समय में आ जाती है, उनकी बुआई को प्राथमिकता दें।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन से बातचीत की। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिमी मानसून के उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में आगे बढ़ जाने की संभावना है।
2: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश का अनुमान जताया है। विभाग के अनुसार शुक्रवार तक कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी ऐसी स्थिति बनी रहने की संभावना है। आज दिल्ली NCR में हुई हल्की बारिश से गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया। विभाग के अनुसार राजधानी में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय है और आने वाले दिनों में भी बारिश होने की संभावना है। विभाग ने कल तक दिल्ली के लिए बिजली गरजने के साथ साथ हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। रिशु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मुंबई से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में लगातार मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है।
3: नासिक और इगतपुरी के कैचमेंट एरियाज में भारी बारिश जारी है, जहां पिछले 24 घंटों में कई इलाकों में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। भरे हुए डैम से पानी छोड़े जाने के बाद गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में भी भारी बारिश हुई है, जिससे कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। पालघर जिले में पिछले 8 दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है, इसके चलते डैम से सूर्या नदी में पानी छोड़ा गया, जिससे नदी के किनारे के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं सांगली जिले में शाम के वक्त तेज बारिश शुरू हुई, जबकि कृष्णा और वरना नदियां फिलहाल पूरी कैपेसिटी के साथ बह रही है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ EPFO खातों में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज जमा करने का काम पूरा कर लेगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत IT सक्षम सेवा CITES प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खातों में 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जाएगी। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में जमा 440 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं। ये मामला वित्तीय लेनदेन और संदिग्ध धन की हेराफेरी से संबंधित है। जांच में पता चला है कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच पार्टी के बैंक खातों से लगभग 160 करोड़ रुपए एक निजी कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई में स्थानांतरित किए गए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप News on AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा कर दी है। तुर्की की राजधानी अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे ईरान के साथ बातचीत में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। हालांकि उन्होंने कहा कि अमरीकी प्रतिनिधि वार्ता जारी रख सकते हैं, लेकिन इसके सफल होने को लेकर उन्होंने संदेह जताया।
4: मुझे लगता है कि अब सब खत्म हो गया है। मैं अब उनसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। उनका नेतृत्व बीमार मानसिकता वाले लोग कर रहे हैं। वे क्रूर और हिंसक लोग हैं, और अगर उनके पास परमाणु हथियार होता तो वो लोग उसका इस्तेमाल कर देते।
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
5: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1677 अंक गिरकर 76,504 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 517 अंक फिसलकर 23,882 पर बंद हुआ।

0: क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्टेंस और यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युको ने जस्मीन पाउलिनी को हरा दिया। पुरुष सिंगल्स में टेलर फ्रिट्स का सामना अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और फ्लेवियो कोबोली का मुकाबला आर्थर फेरी से जारी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहले क्वार्टर फाइनल में शुक्रवार तड़के 1:30 बजे फ्रांस और मोरक्को आमने सामने होंगे। दूसरे क्वार्टर फाइनल में शनिवार तड़के 12:30 बजे स्पेन का सामना बेल्जियम से और तीसरे क्वार्टर फाइनल में रविवार तड़के 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला होगा इंग्लैंड से। अंतिम क्वार्टर फाइनल में रविवार सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। भारत के वैज्ञानिकों ने पहली बार भारतीय क्षेत्र के ऊपरी आयनमंडल का सटीक मानचित्र तैयार करने की नई तकनीक विकसित की है। ये तकनीक जमीन और अंतरिक्ष से प्राप्त आंकड़ों को जोड़कर विकसित की गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि इससे उपग्रह संचालन, संचार प्रणाली और नेविगेशन सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा मॉनसून में सुधार से राहत मिली है, जुलाई में बारिश और तेज होने से खरीफ की बुआई में और तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की। और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
1: गुड इवनिंग। दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Melbourne to take part in the third India-Australia annual summit. India and Russia reaffirm commitment to strengthen counter-terrorism cooperation at multilateral fora. DRDO conducts successful flight test of Pinaka long-range guided rocket at Chandipur in Odisha. Monsoon recovery brings relief. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan expresses confidence that rainfall to gain further momentum this month, leading to acceleration in Kharif sowing. Centre assures all possible assistance to flood-affected states. US President Donald Trump says ceasefire with Iran is over. And in Wimbledon tennis, Marta Kostyuk of Ukraine and Czech player Linda Noskova enter women's singles semi-finals. Prime Minister Narendra Modi arrived at Melbourne in Australia this evening on the second leg of his three-nation tour after concluding his successful visit to Indonesia. Upon arrival in Melbourne, Mr. Modi was warmly received by Australian Minister for Housing, Minister for Homelessness and Minister for Cities, Claire O'Neill. Our correspondent covering the Prime Minister's Australia visit has filed this report.
2: The air in Melbourne buzzed with immense enthusiasm today as the Indian diaspora turned out in full force to welcome Prime Minister Narendra Modi. The high-profile reception was punctuated by a magnificent cultural showcase that beautifully illustrated the deepening cross-continental friendship through the universal language of music and dance. Before the stage came alive with the performances, the Prime Minister briefly interacted with the community members, sharing warm greetings with the gathered diaspora. Following this heartfelt interaction, the evening commenced with an extraordinary symbolic duet between the didgeridoo, an ancient indigenous Australian wind instrument traditionally crafted from hollow eucalyptus trees, and the Indian tabla. This was followed by a captivating Kathak recital led by renowned Melbourne

0: Listeners, before we dive deeper into the program, we'd like to share with you that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any final financial decision.
1: Aur shrotaon, aaiye ab jaan lete hain ki aaj din ke antaral mein share bazaar ki chaal mein kitni lachak rahi. प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में आज 2% से अधिक की गिरावट आई. कच्चे तेल की कीमतों में उछाल, कमजोर वैश्विक संकेतों और बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के कारण बाजार में मंदी देखी गई. सेंसेक्स 1677 अंक गिरकर 76,504 पर बंद हुआ. वहीं निफ्टी 517 अंक फिसलकर 23,882 पर बंद हुआ. विस्तृत शेयर बाजार में मिड कैप 100 इंडेक्स 1.5% से अधिक लुढ़का, जबकि स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में 2% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई. इससे पहले सत्र के दूसरे भाग में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ये कहने के बाद कि ईरान के साथ टकराव खत्म करने के लिए किया गया समझौता समाप्त हो चुका है और वे तेहरान के साथ कोई बातचीत नहीं करना चाहते, बाजार में मंदी आई.
0: Benchmark domestic equity indices witnessed a sharp sell-off today, with both the Sensex and the Nifty plunging more than 2%. A spike in crude oil prices, weak global cues, and renewed geopolitical tensions weighed heavily on the markets. The Sensex tumbled 1,670.

0: 77 points to close at 76,504. The Nifty also dipped 517 points to settle at 23,882. In the broader market on the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 index fell over 1.5%, while the Small-Cap 100 index lost more than 2.2%. Earlier, markets opened on a negative note amid geopolitical concerns. Sentiment weakened further during the latter half of the session after U.S. President Donald Trump said that the memorandum of understanding signed with Iran to end the conflict was over, adding that he did not want to engage with Tehran.
1: सेंसेक्स में शामिल सभी 30 कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई. सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में इंडिगो के शेयर 5%, मारुति के 4% से अधिक और हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर लगभग 3.5% लुढ़के.
0: All 25 sectoral indices on the BSE ended in negative zone. Among the key laggards, services shed 3.2%, PSU banks as well as mid-small private banks, quality tilt, fell more than 2.7%, and FMCG lost over 2.5%. The overall market breadth at the BSE was negative, as shares of 3,211 declined, 1,070 companies advanced, and 173 remained unchanged.
1: और अब जान लेते हैं रुपए का हाल. अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 60 पैसे कमजोर होकर 95 रुपए और 56 पैसे पर बंद हुआ. उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डॉलर की मजबूती को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 101.14 पर कारोबार कर रहा था. भट्टाचार्य जी, आज हमने देखा बाजार में तकरीब 2% से अधिक का जो एक स्लिप आया है, ये क्यों आया है ये तो हम आपसे जानेंगे ही, लेकिन ये आगे आने वाले समय को स्टॉक मार्केट के लिए क्या क्या इंगित करता है?
2: देखिए, जो आज जो हुआ है, जैसे आपने भी अनुगौरा जी ने भी जो बताया
1: जी,
2: उसमें ये साफ लगता है कि ये जो जियोपॉलिटिकल जो कंसर्न्स जो हैं, चिंताएं जो हैं, वो जरा और भी गंभीर हो चुकी हैं, क्योंकि ट्रंप साहब के ऐलान से विश्व को ये लगता है कि जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो सीज फायर की बहुत पहली एक बहुत इम्पोर्टेंट एक कड़ी थी, वो जरा थोड़ी बहुत वीक हो गई है, और मार्केट के सभी जो सिग्नल्स हैं वो अब नेगेटिव में जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को डर ये है कि शायद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो थोड़ी बहुत जो साधारण अवस्था जो आ गई थी, वो फिर वही पुरानी स्थिति में पहुंच जा सकती है, जो तेल के मार्केट लिए ठीक नहीं है. और जो देश पर्टिकुलरली जो एशिया में जो देश हैं जो तेल के आयात के ऊपर काफ़ी निर्भरशील हैं, उनके लिए ये खबर ठीक नहीं है. उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, उनकी जो उपलब्धि की जो एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें बाधा पहुंचेगी. तो हर तरह से देखें तो ये स्टॉक मार्केट ना कि ये शुरुआती तो विश्व की स्टॉक मार्केट से हुई थी, और पर इसका जो प्रभाव जो है वो भारतीय स्टॉक मार्केट में भी हुई है, रुपए में हुई है, क्योंकि रुपए में जो थोड़ी बहुत अप्रिशिएट कर रहा था पिछले कई दिनों में, वो आज लगा कि काफी डिप्रिशिएट कर गया, क्योंकि भारत की जो अगर तेल का दाम अगर फिर से बढ़ना शुरू हो जाए तो हमारी जो डॉलर की डिमांड होगी वो सप्लाई से थोड़ा बढ़ जाएगी. तो उसी सब चीज को देखते हुए मैं समझता हूं कि ये वेस्ट एशिया का जो वातावरण जो है उसके ऊपर स्टॉक मार्केट की जो गतिविधियां बहुत ज्यादा निर्भरशील है. उसी लिए जो डोमेस्टिक मार्केट की जो स्ट्रेंथ और जो वीकनेस जो है वो आज की तारीख में इंटरनेशनल ग्लोबल पॉलिटिक्स और जियोपॉलिटिक्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट निर्भरशील हो चुकी है. तब भी अगर आप ये देखेंगे कि स्टॉक मार्केट में अगर आप अगर झुक के देखें, अगर अंदर जाकर देखें, तो आपको ये लगेगा कि जो सबसे ज्यादा जो समस्याएं जो आ रही हैं वो जो तेल के दामों के ऊपर ज्यादा सेंसिटिव हैं, निर्भरशील हैं, उनकी ज्यादा, जैसे कि इंडिगो
1: जी.
2: जैसे आपने कहा इंडिगो की शेयर मार्केट के काफी नीचे आ गया, क्योंकि वो तेल इस्तेमाल करती है, ईटीएफ के दाम अचानक बढ़ जाएंगी तो उसकी सारी जो प्रॉफिटेबिलिटी में खत्म आएगी। उसी तरह जो मिड कैप स्टॉक्स जो हैं, जो पिछले एक हफ्ते में बहुत अच्छी रिकवरी उनकी हुई है, आज उनकी पिटाई हुई है। स्मॉल कैप में उतनी ज्यादा नहीं,
1: लार्ज कैप में,
2: लार्ज कैप में हुई है, पर लार्ज कैप में जो उनको जो संभालने की स्थिति, संभालने की जो एक एबिलिटी है वो मिड कैप में उतना नहीं है,
1: उतना नहीं है।
2: तो इसीलिए मिड कैप की जो रिकवरी हुई थी वो काफी न्यूट्रलाइज आज के स्टॉक मार्केट में ये हमें दिखने को मिल रहा है। और मुझे जो लगता है कि अगले सप्ताहों में या अगले महीनों में हम सिर्फ इसी चीज को देखते रहें, जो भारतीय कंपनियां जो हैं उनकी स्टॉक मार्केट के परफॉर्मेंस काफी हद तक निर्भरशील रहेगी किस तरह से जो वैश्विक वातावरण की गति किस तरफ जा रही है।
0: So this, I like the use of the word elan that you have made. It's like a declaration only. So this statement by President Trump, which has come in, do you think it's also going to further impact the inflow and outflow of foreign funds into our market?
2: That will have a there will be some impact, but what the bigger impact will be, to what extent the Fed responds to this deepening of the tensions. Hypothetically, the inflation rate in the US is slightly elevated. Now, if it is elevated, it's likely that in the next policy review, the new Fed chairman might decide to increase the rates. Now, if they do that, then it is bad news for us. So money will flow out.
0: Right.
2: Already, we are seeing that India's ranking in gross FDI has gone up, but so has India's investment abroad. So what is happening is that while India continues to get a lot of gross FDI, but when it comes to the net FDI, which matters for our external sector and the impact on the rupee, our net FDI is not doing very well. So Indians are now investing abroad to also maybe to shield and provide a little safeguard to their overall investments in a global market. So I don't think that we should worry very much on our investments, because on what's really happened in the Invest Asia, we should worry more how the Fed reacts to it, maybe in the next month or two.
0: Right. So this volatility is going to, of course, remain not only in Indian markets but across the world. Now, if you're saying that the outflow of Indian funds into foreign markets has also increased, and hence the gap is not so much for the retail investor, because investment also in foreign funds, there are boundaries to that, there are limits. So basically HNIs would be investing because they have the resources and probably the view also and information to invest across. But for the retail investor in India, it's highly volatile, whether it's in India or out. And they are sitting on some very good shares, which despite waiting, and it's like patience is a restless bird, the valuations are going to take some time, and the rate at which they're falling, people wonder whether the valuations will ever, or the prices will ever reach their purchase price. Well, what should they do?
2: This is the time of any stock market investor's journey when he cannot look at things on a day-to-day basis or on a weekly basis or even on a monthly basis. If you are a trader, if you are a punter, you are making your living out of trading, then it's a different matter. But if you are an investor for building your asset base for your old age or something like that, then I would say the time is not yet ripe to keep investing or disinvesting from the market. It's a very, very important time where retail investors must realize that the best safety lies in staying invested and not trying to panic or pull out your money, because this is the time when you might get shortchanged by the sharp fluctuations in the market.
0: Right.
1: श्रोताओं आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं एशिया के बाजार की तरफ. एशियाई शेयर बाजार में आज मिला जुला रुख रहा. दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 5.3% से अधिक, जापान का निकेई 2% से अधिक और चीन का शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स 0.5% गिरा. वहीं हांगकांग का हैंगसैंग 3%, ताइवान का ताइएक्स लगभग 0.5% से अधिक और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.5% बढ़ा. भट्टाचार्य जी, हमने पिछले ही महीने देखा कि कॉस्पी अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा था और अभी हम देख रहे हैं कि कॉस्पी में एकदम मेजर करेक्शन, 20-22% तक उसमें गिरावट देखने को मिली है. ये वैश्विक स्तर पर ये किस तरफ का इशारा है, ये क्या हमें दर्शाता है?
2: जो मैंने पहले जो कहा था
1: जी,
2: कि जो मार्केट्स तेल के आयात के ऊपर अधिक निर्भरशील है उनके लिए ये दौर काफी पेनफुल रहेगा. और यही आज का मार्केट जो कॉस्पी का जो मूवमेंट करीबन 5.5% का गिरावट दर्शाता है. कोरिया कहिए, जापान कहिए, इवन चाइना जो वेस्ट एशिया के तेल के ऊपर काफी निर्भरशील है
1: जी,
2: उनके लिए जो वेस्ट एशिया में जो हुआ, जो ट्रंप साहब का जिसे ऐलान जो हुआ, उससे मैं समझता हूँ कि इन देशों के लिए और भारत के लिए भी एक एक एक बहुत ही सेंसिटिव मामला है. हालांकि हमारे देश में हमने जो तेल को जो हमने मैनेजमेंट करने की जो हमारी पॉलिसी है, हम ज्यादा क्विक रिएक्शन न देकर हमने ओवरऑल मैनेजमेंट का एक सिलसिला रखा है. और ईरान के साथ भी बात कर हमारी काफी जहाजें वहां से आ गई हैं. पर इन देशों में जो इनका इम्पैक्ट रिटेल मार्केट में या प्राइस लेवल में हुआ है, अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो उनमें ज्यादा हुआ है. और इसीलिए स्टॉक मार्केट को भी ये यही चीज दर्शा रहा है, क्योंकि वहां पे जो जो जो एक गार्डरेल कह सकते हैं हम, आप जो सरकार ने तेल कंपनियों को और जो उपभोक्ताओं को दिया है, वो उन मार्केट में ये अवेलेबल उपलब्ध नहीं है. इसीलिए उनके स्टॉक मार्केट में जो हलचल मस्ती है वो ज्यादा मस्ती है और हमारे स्टॉक मार्केट में रिलेटिवली कम होती है, क्योंकि इम्पैक्ट थोड़ा सीमित रहता है.
0: सो इवन फॉर द यूएस मार्केट द फेड रिजल्ट्स, द व्हाट द फेड इज गोइंग टू से इज गोइंग टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल.
2: ओह यस, एब्सोल्युटली. आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट. इट विल हैव एन इम्पैक्ट. द जॉब मार्केट इज अंडर स्ट्रेस, नॉट जस्ट फॉर द ऑयल बट ऑल्सो फॉर द एआई. यू नो व्हाट हैज रियली हैपेंड is that in this West Asian war debate and discussion, we have almost forgotten how the world economy is going to be or has been already been impacted by the advent of artificial intelligence. So therefore the AI is going to have a major impact, and the stock market is yet to fully absorb the impact of the advent of AI in various areas. So whether it is artificial intelligence or whether it is a super intelligence or is a general intelligence, so in every way we are yet to see the full impact of the changes in the global economic order.
0: Right, so global economic order, I think it's layered. Geopolitics,
2: absolutely.
0: Every country's domestic situation, yes. Interdependence.
2: Yeah.
0: It's really layered, and we can't see a direct impact. Because of this, this is happening. There
2: absolutely.
0: Are many factors.
2: Absolutely.
0: Right. We move on to our next story. Listeners, outstanding credit extended by non-banking financial companies, NBFCs, against gold jewelry surged nearly 70% on an annual basis in May this year, marking the fastest growth among all lending segments. Outstanding loans against gold jewelry stood at nearly 3.3 lakh crore rupees at the end of May, up from over 1.94 lakh crore rupees a year earlier. This is as per the latest data on sectoral deployment of outstanding credit by NBFCs, including housing finance companies, released by the Reserve Bank of India for the first time. Retail loans contributed to the most to overall credit growth by NBFCs, with 19.5% year-on-year growth in May. With regard to other sectors, credit growth in

0: gold or the credit.
1: It's not good news.
0: Not good news.
1: Because what you are seeing is that NBFC sector, which is a very vibrant sector in the Indian economy, is doing very well with regard to retail loans. But with regard to loans to the more productive sectors, sectors like industry and services sector, that is not doing too well. So I think it's a data point that one needs to pause and understand. It is also connected with the point that you mentioned about gold. People are using their gold reserves to borrow more. Now, NBFCs will have the collateral as a gold, and so it is, while it is sustaining the consumption boom in the economy, but it is not necessarily contributing to productive investment in the economy. Money is going to boost consumption, and probably it will also contribute to greater household debt level.
0: Household strain level.
1: Yeah. So household debt is already around 47% of GDP, which it has never been. While we are way below what happens in China or in other countries, but we are in relatively a poor country. So where the household debt is around 47% of GDP, where the retail loans are growing at a rate faster than loans to services and industry. But the good news is that loans to agriculture and allied activities, which is the dairy sector, they are doing well. So which means perhaps the rural economy is getting the benefit of a good pace of activity in the NBFC loan giving sector. So it's not good news, but there are rays of hope. For example, if the dairy sector can really convert these loans into more productive jobs, productive gains, if the consumption boom remains controlled and sustains investment in the other parts of the economy, there could be a possibility that we may come out of this phase. But this is a phase where we need to closely watch it and before we go to the next stage.
0: Right. श्रोताओं, अन्य खबरों में, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पत्रकारों से बात करते हुए श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष अप्रैल में ही अलनीनो की चुनौती से निपटने की तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने बताया कि अलनीनो निगरानी प्रकोष्ठ और नोडल अधिकारियों के माध्यम से बुवाई, फसल और बाजार की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 3-4 दिनों में हुई वर्षा के कारण कई राज्यों में कम वर्षा वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 हो गई है। महोदय, हम काफी वक्त से खबरें देख रहे थे, सुर्खियों में देख रहे थे कि अलनीनो का खतरा जो है हमारे कृषि प्रधान देश पर एक मंडरा रहा था, लेकिन अब शायद स्थिति सुधरती हुई नजर आ रही है।
1: जो ओवरऑल डेफिसिट जो है
0: जी,
1: वो कम हुई है, पर एल नीनो का जो प्रकोप या प्रभाव जो हमें जो डर है होता है, वो सिर्फ ओवरऑल डेफिसिट के ऊपर नहीं होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल के ऊपर होता है। और अगर मान लीजिए एल नीनो का प्रकोप सितंबर, अगस्त सितंबर के बाद आता है, मैं समझता हूं कि उतनी चिंताजनक बात नहीं होगी जितनी चिंताजनक बात होगी अगर उसका प्रकोप अब होता है।
0: हाँ।
1: जब हमारी रेन की बहुत जरूरी
0: है। जरूरत है अभी।
1: सो ओवरऑल जो 43% का जो शॉर्टफॉल था वो कम हुआ है, 10% की घटी है, पर अभी भी गैप है, और ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारे देश में वो कैसा होता है। पर एल नीनो से हमें संभल के और मेजर्ड अप्रोच लेना चाहिए, और सरकार जो स्टेटमेंट जो आ रही है तो वो लग रहा है कि पूरी तरह से सचेतन है और लोगों

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत मेरे मन में आपके लिए स्वागत करती हूँ मैं कुसुम। पहला गीत फिल्म जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली से आवाज लता मंगेशकर की।

आपको पता है जोहरा जबी का मतलब क्या होता है? नहीं, जोहरा का अर्थ होता है वीनस प्लेनेट, यानी शुक्र ग्रह, आसमान का सबसे खूबसूरत चमकता हुआ सितारा। प्राचीन रोमन सभ्यता में वीनस को सुंदरता और खूबसूरती का प्रतीक माना गया है। जबी का अर्थ होता है माथा, तो अब से आप भी अपनी प्रियतमा को जोहरा जबी बुला सकते हैं। फिल्म होली आयरी से ये गीत मुकेश की आवाज में।

ये तमन्नाएं आरजुएं हमारी जिंदगी को रवानी देती हैं। इसलिए जिंदगी में तमन्नाओं का होना बहुत जरूरी है। ये और बात है कि अक्सर ये तमन्नाएं पूरी नहीं होती, लेकिन जिंदगी के हर मरहले में ये किसी न किसी तरह मौजूद जरूर रहती हैं। और जब कभी ये तमन्नाएं पूरी होती हैं ना, तो दिल गुनगुना उठता है। क्या ये गीत फिल्म हाथी मेरे साथी से।

0: इसी गीत के साथ ही गीत मेरे मन में थी यहीं तक। कुसुम को दीजिए इजाजत, आप अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कराते रहिए, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। फिलहाल इस चैनल पर अब आपके लिए है समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कल ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया की मंत्री क्लेयर ओनिल ने प्रधानमंत्री की अगवानी की। इस दौरान प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। बाद में मेलबर्न में आयोजित सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने AR रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। उन्होंने कहा कि वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। श्री मोदी ने ये भी कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे, साथ ही वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। भारत और रूस ने संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में किसानों के हितों की रक्षा के लिए खोपरा और तोतापुरी आम की खरीद को मंजूरी दे दी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और उन्हें कम कीमत पर फसल बेचने की मजबूरी से राहत मिलेगी। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 87,000 मीट्रिक टन से अधिक खोपरा खरीदने को मंजूरी दी है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आम की खरीद भी की जाएगी। मंत्रालय के अनुसार इस निर्णय से किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अफगानिस्तान के कृषि, सिंचाई और पशुपालन मंत्री मौलवी अताउल्लाह ओमारी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने कृषि, सिंचाई, पशुपालन, कृषि अनुसंधान, शिक्षा, क्षमता निर्माण और कृषि व्यापार में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश की कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकती है। उन्होंने कहा कि एआई के उपयोग से प्रत्येक किसान सालाना लगभग 5,000 रुपये की बचत कर सकता है। नई दिल्ली में 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए डॉ सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। भारत और म्यांमार ने सीमा सुरक्षा और द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग को और मजबूत बनाने पर सहमति व्यक्त की है। नई दिल्ली में संपन्न हुए दो दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय बैठक में दोनों देशों ने आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, हथियारों की तस्करी, मानव तस्करी, साइबर अपराध और अन्य संगठित अपराधों से मिलकर निपटने पर चर्चा की। बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व गृह सचिव गोविंद मोहन ने किया, जबकि म्यांमार के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व गृह मंत्रालय के उप मंत्री मेजर जनरल मिंथू ने किया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स

वक्त हुआ है 12:10 और ठीक 58 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा, मैं हूँ राखी आपके साथ।

जमीन आसमान फिल्म से आपने गाना सुना। लता मंगेशकर की आवाज में अनजान ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने। इस मौसम में मौसम के सिवा और क्या बात हो सकती है। और सच भी तो है, जब बादल आसमान पर अपनी चादर बिछा दे, ठंडी हवाएं खिड़कियों को सहला जाएं और बारिश की बूंदें अपनी मधुर ताल छेड़ दें, तब हर बातचीत का विषय भी यही मौसम बन जाता है। खिड़की के पास बैठकर दूर तक फैली हरियाली को निहारना और साथ में पुराने सुरीले गीत, बस यही तो है सुकून का दूसरा नाम।

लवर्स फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने। मौसम की अपनी एक अलग ही जुबान होती है। कभी ये रिमझिम फुहारों में मुस्कुराता है, कभी ठंडी हवाओं में कोई भूली बिसरी याद जगा देता है, तो कभी बादलों की गड़गड़ाहट के बीच दिल की खामोशी में सुनाई देने लगती है।

तेरी कसम फिल्म का गाना आपने सुना अमित कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने।

वक्त हुआ है 12:31 और ठीक 58 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर इस वक्त आप सुन रहे हैं निशिगंधा। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

थोड़ी सी बेवफाई फिल्म से आपने गाना सुना अनवर और सुलक्षणा पंडित की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने। ऐसे लवली लवली मौसम में दिल भी कुछ हल्का हल्का हो जाता है, होंठ अनायास गुनगुनाने लगते हैं, चाय की हर चुस्की सुकून का एहसास देती है और पुराने सदाबहार गीत यादों की खिड़कियां खोल देते हैं। हर धुन जैसे बारिश की बूंद बनकर मन की धरती को भिगो जाती है।

बाबू फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। कुछ मौसम सिर्फ बदलते नहीं, एहसास भी बदल देते हैं। हवा का हर झोंका जैसे कोई प्यारा सा पैगाम लेकर आता है। बादलों की हर आहट दिल की धड़कनों में एक नई लय जगा देती है और रिमझिम बरसती बूंदे मानो जिंदगी की भागदौड़ को कुछ पल के लिए थाम लेना चाहती हैं।

सत्ते पे सत्ता फिल्म का गाना आपने सुना। आशा भोसले और दिलराज कौर की आवाज में आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन।

ने। कुछ मौसम मंजिल से ज्यादा सफर को खूबसूरत बना देते हैं। ठंडी हवाएं चेहरे को छूकर गुजरती हैं, बादल आसमान पर अपनी कहानी लिखते हैं और हर मोड़ पर लगता है जैसे कोई नया नजारा हमारा इंतजार कर रहा हो। ऐसे मौसम में कदम अपने आप धीमे हो जाते हैं, रास्ते अनजाने जरूर होते हैं लेकिन डर बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि हर मोड़ एक नई मुस्कान, एक नया एहसास और एक नई याद अपने साथ लेकर आता है।

बरसात की एक रात फिल्म का गाना आपने सुना, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। वक्त हुआ है 12:55 और ठीक 56 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 1 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 1:10 पर गीत सुहाने मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत।

0: हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया के मंत्री क्लेयर ओनिल ने प्रधानमंत्री की अगवानी की। इस दौरान प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। बाद में मेलबर्न में आयोजित सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने उनका स्वागत किया। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने AR रहमान की प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। उन्होंने कहा कि वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। श्री मोदी ने यह भी कहा कि यात्रा के दौरान उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे, साथ ही वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। भारत और रूस ने संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और संघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में किसानों के हितों की रक्षा के लिए खोपरा और तोतापुरी आम की खरीद को मंजूरी दी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और उन्हें कम कीमत पर फसल बेचने की मजबूरी से राहत मिलेगी। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 87,000 मीट्रिक टन से अधिक खोपरा खरीदने को मंजूरी दी है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आम की खरीद को भी की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार किसानों को सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। नई दिल्ली में कृषि नेतृत्व सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि, पीएम किसान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि ऋण और उर्वरक सब्सिडी जैसी योजनाओं से किसानों की आय बढ़ाने और खेती को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अफगानिस्तान के कृषि, सिंचाई और पशुपालन मंत्री मौलवी अताउल्लाह ओमारी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने कृषि, सिंचाई, पशुपालन, कृषि अनुसंधान, शिक्षा, क्षमता निर्माण और कृषि व्यापार में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने तंबाकू कंपनियों को किसानों के हितों की रक्षा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तुरंत खरीद शुरू करने के निर्देश दिए हैं। अमरावती में समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि तंबाकू का मूल्य 200 रुपये प्रति किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने खरीद प्रक्रिया में तेजी लाने के साथ ही कंपनियों को अपने खरीद संबंधी वादे पूरे करने के निर्देश दिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया को आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों की सूची से हटाने के फैसले की जानकारी अमेरिकी कांग्रेस को दी है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि ये अमेरिका और सीरिया के रिश्तों में एक नया और महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने सीरिया की नई सरकार के प्रयासों की भी सराहना की। एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजों की चैंपियनशिप में भारत की अंडर 23 महिला मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 9 पदक पक्के कर लिए हैं। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में भारत की 9 मुक्केबाज सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi arrived in Melbourne, Australia yesterday on the second leg of his three-nation visit. He was warmly received.

वक्त हुआ है 1:10 और ठीक 59 सेकेंड आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर प्रोग्राम है गीत सुहानी। मैं हूं राखी आपके साथ।

बरसात फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज में। शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। बरसात एक ऐसा मौसम जिसने बॉलीवुड के गीतकारों और संगीतकारों को हमेशा से प्रेरित किया है। इस भीगी रुत पर हिंदी सिनेमा में अनगिनत गीत रचे गए। कभी रिमझिम बुहारों में प्यार की खुशबू घुली, तो कभी बरसती बूंदों ने बिछड़ने का दर्द बयान किया। कहीं सावन ने दिलों को मिलाया, तो कहीं बारिश ने यादों को और भी गहरा कर दिया। सच्ची तो है, बॉलीवुड में बरसात पर लिखे गए गीतों की दुनिया जितनी विशाल है, उतनी ही दिलकश भी।

चलती का नाम गाड़ी फिल्म से आपने गाना सुना किशोर कुमार की आवाज में। मजरूह ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। बरसात, ये सिर्फ एक मौसम नहीं बल्कि एहसासों का सबसे खूबसूरत नाम है। जब आसमान से गिरती बूंदें धरती को छूती हैं, तो जैसे हर ओर एक नई धुन, एक नई खुशबू और एक नया जादू बिखर जाता है। शायद यही वजह है कि बॉलीवुड ने भी इस मौसम को हमेशा खुले दिल से अपनाया है। वैसे यही कारण है कि जब भी बारिश की पहली बूंद गिरती है, तभी अचानक से कोई ना कोई फिल्मी नगमा होठों पर आ जाता है। कभी मन झूम उठता है, कभी दिल यादों की गलियों में निकल पड़ता है, तो कभी कोई मधुर धुन इस मौसम को और भी हसीन बना देती है।

काला बाजार फिल्म का गाना आपने सुना, गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाज में। शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। रिमझिम के तराने लेकर आई बरसात और साथ लाई भीगी भीगी यादें, महकती हवाएं और दिल को छू लेने वाले एहसास। बारिश का मौसम जब भी दस्तक देता है तो प्रकृति का हर रंग जैसे और भी निखर उठता है। ऐसे ही मनभावन मौसम को सुरों में पिरोता ये खूबसूरत नगमा जो अभी आपने सुना, वाकई रिमझिम के तराने लेकर आई बरसात।

परख फिल्म का गाना आपने सुना। लता मंगेशकर की आवाज में शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया सलिल चौधरी ने। बारिश की भीनी भीनी खुशबू, पत्तों पर ठहरी ओस, मिट्टी की सौंधी महक और मन को छू लेने वाली ठंडी हवाएं, जैसे प्रकृति ने चारों ओर संगीत बिखेर दिया हो, ऐसे ही सुरमय और मनमोहक मौसम का एहसास कराता है ये प्यारा गीत जो अभी आपने सुना। इसकी धुन और बोल बरसात की हर बूंद को एक मधुर एहसास में बदल देते हैं।

श्री 420 फिल्म का गाना आपने सुना। लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज में शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने।

वक्त हुआ है 1:33 और ठीक 4 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

उसने कहा था फिल्म से आपने ये गाना सुना, तलत महमूद और लता मंगेशकर की आवाज में शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया सलिल चौधरी ने। बारिश बारिश और ये प्यारे प्यारे तराने कानों में रस खोलते, दिल में उमंग जगाते, ये प्यारे प्यारे तराने।

चोरी चोरी फिल्म से आपने गाना सुना लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज में। बरसात का जिक्र हो और हिंदी फिल्म संगीत की बात ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। कभी भीगी सड़कों पर प्रेम ने दस्तक दी थी तो कभी सावन की फुहारों ने बिछड़ने की टीस को सुरों में ढाल दिया था। 50 और 60 के दशक में रचे गए बरसाती नगमे आज भी उतने ही ताजा लगते हैं, मानो हर बारिश के साथ फिर से जन्म ले लेते हों।

बरसात की रात फिल्म से आपने ये गाना सुना। इसे गाया मोहम्मद रफ़ी ने, इसको लिखा साहिर ने और संगीत दिया रोशन ने। कुछ बारिशें सिर्फ मौसम नहीं बदलती बल्कि जिंदगी भर के लिए याद बन जाती हैं। कभी भीगी हुई राहें, कभी ठंडी हवाएं, तो कभी किसी अपने का साथ। बरसात अनगिनत लम्हों को हमेशा के लिए दिल में बसा देती है।

कश्मीर की कली फिल्म का गाना आपने सुना रफी और आशा की आवाज में। एस एच बिहारी ने इसे लिखा और संगीत दिया ओपी नैयर ने। जब दिल में मोहब्बत की पहली दस्तक सुनाई देती है तो हर बादल दीवाना लगता है, हर फिजा गुनगुनाने लगती है और हर मौसम में एक नई ताजगी उतर आती है।

नौजवान फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। वक्त हुआ है 1:56 और ठीक 42 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से बस कुछ ही देर में सुनिए समाचार। ठीक आप 2 बजे सुनेंगे समाचार और 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कल ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। उन्होंने कहा कि वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। श्री मोदी ने यह भी कहा कि यात्रा के दौरान उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले समुद्र में मत्स्य पालन के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करने हेतु शुभारंभ कार्यक्रम में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन ओडिशा डीप सी फिशिंग मिशन दस्तावेज का भी विमोचन करेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान खुर्दा के 15वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में किसानों के हितों की रक्षा के लिए खोपरा और तोतापुरी आम की खरीद को मंजूरी दी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे किसानों की उनकी उपज को उचित मूल्य मिलेगा और उन्हें कम कीमत पर फसल बेचने की मजबूरी से राहत मिलेगी। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 87,000 मीट्रिक टन से अधिक खोपरा खरीदने को मंजूरी दी है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आम की खरीद भी की जाएगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश की कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकती है। उन्होंने कहा कि एआई के उपयोग से प्रत्येक किसान सालाना लगभग 5,000 रुपए की बचत कर सकता है। नई दिल्ली में 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए डॉ सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। पाकिस्तान के कराची तट से 12 घंटे पहले लापता हुए बोइंग कार्गो विमान का मलबा गहरे समुद्र में पाकिस्तानी बचाव दल को मिल गया है। विमान में सवार 5 चालक दल के सदस्यों की तलाश जारी है। पाकिस्तान हवाई अड्डा प्राधिकरण ने बताया कि K2 एयरवेज के कार्गो बोइंग 737 विमान का मलबा ओरमारा बंदरगाह से 53 समुद्री मील दक्षिण में बरामद किया गया। फ्लाइट ट्रैकिंग सेवा फ्लाइट रडार 24 के अनुसार विमान कराची के दक्षिण पश्चिम में समुद्र में कई बार ऊंचाई में अचानक बदलाव के बाद तेजी से नीचे उतरने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अलशारा को पत्र लिखकर बताया है कि उन्होंने सीरिया को आतंकवाद प्रायोजित करने वाले देशों की अमरीकी सूची से हटाने का फैसला किया है। ट्रंप ने कहा कि इससे सीरिया के पुनर्निर्माण का रास्ता खुलेगा और अमरीकी कंपनियां वहां निवेश के लिए तैयार हैं। इस फैसले को लागू होने से पहले अमरीकी कांग्रेस 45 दिनों तक इसकी समीक्षा करेगी। एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजों चैंपियनशिप में भारत की अंडर 23 महिला मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 9 पदक पक्के कर लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Tanvi Gupta. Prime Minister Narendra Modi arrived in Melbourne, Australia yesterday on the second leg of his three-nation visit. He was warmly received by Australian Minister for Housing, Minister for Homelessness and Minister for Cities, Claire O'Neill, upon his arrival. The Prime Minister said this visit will add vigour to the India-Australia Comprehensive Strategic Partnership. In a social media post, Mr. Modi said that he looked forward to the talks with these with his Australia counterpart, Anthony Albanese. The Prime Minister said that he will also have the opportunity to interact with the Indian diaspora, which is an important pillar of India-Australia partnership. During his visit, Mr. Modi will participate in the third India-Australia Annual Summit.

वक्त हुआ है 2:10 और ठीक 56 सेकेंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर रात सुरमई, मैं हूँ राखी आपके साथ। रात सुरमई हो तो हर एहसास जैसे और भी गहरा हो जाता है। चांदनी की हल्की हल्की रोशनी, ठंडी हवा के झोंके और दूर कहीं बजते पुराने गीत, ये सब मिलकर मन को एक अलग ही सुकून दे जाते हैं।

कुछ गीत समय के साथ पुराने नहीं होते, बल्कि हर बार सुनने पर नए लगते हैं। ये भी एक ऐसा ही सदाबहार नगमा है, जिसमें प्रेम की मासूमियत, साथ निभाने का विश्वास और जीवन के सफर की मधुर लय सुनाई देती है। गाइड फिल्म का गाना अभी आपने सुना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने।

आवाज में इसे लिखा कवि नीरज ने और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। प्रेम की तड़प, समर्पण और इंतजार की गहरी भावना झलकती है इस गीत में। ये एहसास दिलाता है कि जब कोई अपने प्रिय के बिना अधूरा महसूस करता है तो उसका मन उसी के स्नेह और साथ की प्यास से भरा रहता है।

अभिनेत्री फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: वक्त हुआ है 2:28 और ठीक 26 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर रात सुरमई। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: कैसे कहें हम प्यार ने हमको

0: पर हमसे खुद से हम।
1: शर्मीली फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। इसे लिखा कवि नीरज ने और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। प्रेम कभी मुस्कान देता है, कभी इंतजार, कभी सपनों को रंग देता है तो कभी यादों की हल्की सी कसक छोड़ जाता है। ये एहसास इंसान को बदल भी देता है और सवार भी देता है। शायद इसलिए कहा गया है कि प्यार अपने रास्ते खुद चुनता है और अपनी ही तरह जीवन को नए रंग दिखाता है।

तेरे मेरे सपने फिल्म से आपने गाना सुना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। कवि नीरज ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। जिंदगी की सबसे खूबसूरत खुशियां अक्सर बिना दस्तक दिए चली आती हैं। जब प्रेम अपने साथ नए सपने, नई उम्मीदें और नई किलकारियां लेकर आता है, तो सचमुच लगता है जैसे जीवन की बगिया महक उठी है।

अभिमान फिल्म का गाना आपने सुना, रफी और लता की आवाज में। मजरूह ने इसे लिखा और संगीत दिया एस डी बर्मन ने।

वक्त हुआ है 2:43 और ठीक 49 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर रात सुरमई, मैं हूं राखी आपके साथ। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुरमई रात की खामोशी में जब कोई धुन गुनगुनाती है, हर भूली बिसरी याद मुस्कुराते हुए लौट आती है।

0: अरे आनंद बाबू,
1: आइए आइए आनंद बाबू, आप और इस मंदिर में मुझे पहचाना नहीं?
2: गाइए ना, आप रुक क्यों गए?
3: गाओ ना बेटी, गाओ।

अमर प्रेम फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने। हर बीतता पल उम्मीद को थोड़ा और गहरा कर देता है और हर आहट पर दिल यही सोचता है कि शायद अब वो आ जाए। रहना बीती जाए शाम ना आए, ये सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि उस बेचैनी और विरह का स्वर है जो प्रेम में इंतजार करने वाला हर दिल कभी ना कभी महसूस करता है।

सफर फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। इंदीवर ने इसे लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। वक्त हुआ है 2:55 और ठीक 5 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 3:10 पर हमराही फिरोज आलम के साथ। तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कल ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया की मंत्री क्लेयर ओनेल ने प्रधानमंत्री की अगवानी की। इस दौरान प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। बाद में मेलबर्न में आयोजित सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन

प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले समुद्र में मत्स्य पालन के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करने हेतु शुभारंभ कार्यक्रम में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन ओडिशा डीप सी फिशिंग मिशन दस्तावेज का भी विमोचन करेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान खुर्दा के 15वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज अगरतला में त्रिपुरा व्यापार सम्मेलन 2026 में शामिल होंगे। इस अवसर पर श्री सिंधिया पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवेश, संपर्क, रसद और औद्योगिक विकास को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं और भविष्य की कार्ययोजना की रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य क्षेत्र की आर्थिक क्षमता को उजागर करना है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने कहा है कि सम्मेलन का उद्देश्य राज्य में औद्योगिक निवेश, व्यापार और उद्यमिता को बढ़ावा देना तथा स्थानीय उद्योगों को राष्ट्रीय और वैश्विक बाजारों से जोड़ना है। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में किसानों के हितों की रक्षा के लिए खोपरा और तोतापुरी आम की खरीद को मंजूरी दे दी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और उन्हें कम कीमत पर फसल बेचने की मजबूरी से राहत मिलेगी। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 87,000 मीट्रिक टन से अधिक खोपरा खरीदने को मंजूरी दी है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आम की खरीद भी की जाएगी। पाकिस्तान के कराची तट से 12 घंटे पहले लापता हुए बोइंग कार्गो विमान का मलबा गहरे समुद्र में पाकिस्तानी बचाव दल को मिल गया है। विमान में सवार 5 चालक दल के सदस्यों की तलाश जारी है। पाकिस्तान हवाई अड्डा प्राधिकरण ने बताया कि K2 एयरवेज के कार्गो बोइंग 737 विमान का मलबा ओरमारा बंदरगाह से 53 समुद्री मील दक्षिण में बरामद किया गया। फ्लाइट ट्रैकिंग सेवा के अनुसार विमान कराची के दक्षिण पश्चिम में समुद्र में कई बार ऊंचाई में अचानक बदलाव के बाद तेजी से नीचे उतरने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अलशारा को पत्र लिखकर बताया है कि उन्होंने सीरिया को आतंकवाद प्रायोजित करने वाले देशों की अमरीकी सूची से हटाने का फैसला किया है। ट्रंप ने कहा कि इससे सीरिया की पुनर्निर्माण का रास्ता खुलेगा और अमरीकी कंपनियां वहां निवेश के लिए तैयार है। इस फैसले को लागू होने से पहले अमरीकी कांग्रेस 45 दिनों तक इसकी समीक्षा करेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर वक्त हो चुका है 3:11 और 13 सेकंड। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलूस आदाब। दोस्तों, रात के इस तन्हाई में हम और आप मिलकर चलेंगे एक बेहद खूबसूरत सफर पर प्यार मोहब्बत के। उन गुजरे दौर के उन दिनों को हम याद करेंगे

मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा जी की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ों में यह नगमा था फिल्म दिल देखे धोखों से। यह नगमा था 1959 की फिल्म से और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा था उषा खन्ना जी ने और गीत लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोस्तों कहते हैं कि हर इंसान की जिंदगी में कई बार एक ऐसे मौके आते हैं जब इंसान अपनी तमाम मुश्किलात तमाम परेशानियों को दूर कर प्यार मोहब्बत की दुनिया में कदम बढ़ाता है और वह कदम कई बार इतने आगे चले जाते हैं कि फिर वापस मुड़ना मुश्किल होता है। हालांकि दूसरी तरफ से अगर वैसी बात ना हो तो फिर ये परेशानियां और ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसा ही एक बेहद खूबसूरत नगमा है इस खूबसूरत गीत के संगीत के सफ़र में जिसका नाम है हमराही। और हमराही की इस बेहद खूबसूरत महफिल में मैं हूँ आपके साथ फिरोज़। और अगला नगमा एक ऐसा ही है मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा जी की आवाज़ों में एक बार फिर से इन दोनों महान गायकों की जुगलबंदी इस गीत को और भी ख़ास बना देती है। तो आइए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा नगमा फिल्म मेरे सनम से। और ये फिल्म आई थी 1965 में। इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाने वालों में विश्वजीत, आशा पारेख, मुमताज और प्राण वगैरह थे। इस फिल्म के गीतों को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है हम सबके प्यारे हम सबके चहेते ओपी नैयर साहब ने।

एक छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी सुनने वालों का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 3:33:20 और यह महफिल है आपकी अपनी पसंदीदा हमराही की, और हमराही की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं यानी आपका दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलूस आदाब एक बार फिर से। दोस्तों, कभी आपने ऐसा सोचा है या कभी ऐसा हुआ है कि आप जहां भी जाएं किसी की याद, किसी की शरारत या किसी का ख्याल आपका पीछा ही ना छोड़े? बस इसी खूबसूरत एहसास को बड़े ही दिलकश अंदाज में पेश करता है हमारा अगला यह नगमा, और यह नगमा है बहुत ही खूबसूरत फिल्म जो 1963 में आई थी, चोरी चोरी। फिल्म चोरी चोरी का ये मशहूर नगमा है जहां मैं जाती हूं, उसके बोल लिखे हैं मशहूर गीतकार शैलेंद्र साहब ने, और जिनके अल्फाज सीधे दिल में उतर जाते हैं, और जब इन अल्फाज को अपनी जादुई आवाजों से सजाए लता जी और मन्ना डे साहब, तो हर सुर एक नई मुस्कुराहट बिखेर देता है। तो आइए इसी बेहद खूबसूरत नगमे के साथ हम आगे बढ़ते हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और इसको संगीत से सजाया है हम सबके प्यारे शंकर जयकिशन साहब ने।

ये रघुवता फिल्म जिस देश में गंगा बहती है से आवाजें थी लता जी, गीता दत्त, मुकेश, मन्ना डे साहब, महेंद्र कपूर वगैरह। और ये फिल्म आई थी 1960 में और इस गीत को लिखा था शैलेंद्र साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा था शंकर जयकिशन साहब की जोड़ी ने। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हमराही की इस दिलकश महफिल में और आज मैं हूं आपका हमराही फिरोज। दोस्तों कहते हैं कि मोहब्बत की दुनिया में कुछ इजहार शब्दों से नहीं बल्कि नजरों से होते हैं और कुछ सुरों से होते हैं। जब दिल अपने जज्बात बयान करता है तो हर धुन एक नई दास्तान बन जाती है। ऐसा ही एक बेहद खूबसूरत नगमा आज की इस महफिल में हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म आई मिलन की बेला से। ये फिल्म आई थी 1964 में और उसी फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत नगमा है। उसके दिल को छू लेने वाले बोल लिखे हैं शैलेंद्र साहब ने और इसकी मनमोहक धुन तैयार की है संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन साहब की। इस गीत को अपनी जादुई आवाजों से अमर बना दिया है मोहम्मद रफी साहब और लता जी ने। दोनों की बहुत ही मधुर जुगलबंदी इस गीत को सुनने वालों के दिल में हमेशा के लिए बस जगह बना देती है। तो आइए इस सफर को यूं ही बरकरार रखते हुए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं बहुत ही खूबसूरत ये नगमा आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

ओ सनम तेरे हो गए हम, फिल्म आई मिलन की बेला गाए नगमा, रफी साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाजों। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गोल्डन एरा के उन रोमांटिक और बेहद खूबसूरत युगल गीतों के साथ हम हाजिर हैं, जो क्लासिक नगमे हैं वो आपकी खिदमत में हम आपके लिए लेकर आए हैं। और दोस्तों, कहते हैं कि मोहब्बत की सबसे दिलचस्प बात शायद यही है कि कभी कभी दिल की बातें अल्फाज से नहीं बल्कि सिर्फ एक मुस्कान, एक नज़र और एक कुछ खामोश इशारों से समझ में आ जाती है। हमारा अगला जो नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं वो भी कुछ ऐसा ही प्यार की खूबसूरती को बयान करता है, और ये नगमा है फिल्म कश्मीर की कली से। ये फिल्म आई थी 1964 में और इस गीत को लिखा है एस एच बिहारी ने और अपनी यादगार धुनों से सजाया है ओपी नैयर साहब ने। इस गीत में अपनी मधुर और दिलनशीन आवाजों का जादू भी बिखेरा है आशा भोसले जी और मोहम्मद रफी साहब ने। तो इन दोनों की बेहद खूबसूरत आवाजें आपके खिदमत में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हमराही की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में आपके लिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कल ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया की मंत्री क्लेयर ओनिल ने प्रधानमंत्री की अगवानी की। इस दौरान प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। बाद में मेलबर्न में आयोजित सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने AR रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। उन्होंने कहा कि वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता को

0: खुर्दा के 15वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज अगरतला में त्रिपुरा व्यापार सम्मेलन 2026 में शामिल होंगे। इस अवसर पर श्री सिंधिया पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवेश, संपर्क, रसद और औद्योगिक विकास को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं और भविष्य की कार्ययोजना की रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने कहा कि सम्मेलन का उद्देश्य राज्य में औद्योगिक निवेश, व्यापार और उद्यमिता को बढ़ावा देना तथा स्थानीय उद्योगों को राष्ट्रीय और वैश्विक बाजारों से जोड़ना है। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में किसानों के हितों की रक्षा के लिए खोपरा और तोतापुरी आम की खरीद को मंजूरी दी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और उन्हें कम कीमत पर फसल बेचने की मजबूरी से राहत मिलेगी। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 87,000 मीट्रिक टन से अधिक खोपरा खरीदने को मंजूरी दी है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आम की खरीद भी की जाएगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश की कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकती है। उन्होंने कहा कि एआई के उपयोग से प्रत्येक किसान सालाना लगभग 5,000 रुपए की बचत कर सकता है। नई दिल्ली में 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए डॉ सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। अमरीकी सेना ने कहा है कि वे ईरान पर फिर से हवाई हमले कर रही है। यह हमले एक दिन पहले होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान द्वारा जहाजों पर किए गए हमलों के बाद शुरू हुए हैं। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरानी हमलों से युद्धविराम समाप्त हो गया है और अमरीका जरूरत पड़ने पर और कार्रवाई करेगा। हालांकि बाद में उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा तनाव से बड़े युद्ध की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। इस बीच ईरानी मीडिया ने देश के दक्षिणी तटीय शहरों में कई विस्फोटों की खबर दी है। हालात को देखते हुए क्षेत्र में तनाव लगातार बना हुआ है। एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की अंडर 23 महिला मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 9 पदक पक्के कर लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi arrived in Melbourne, Australia yesterday on the second leg of his three-nation visit. He was warmly received by Australian Minister for Housing, Minister for Homelessness and Minister for Cities, Claire O'Neill, upon his arrival. The Prime Minister said this visit will add vigour to the India-Australia Comprehensive Strategic Partnership. In a social media post, Mr. Modi said that he looked forward to the talks with his Australia counterpart, Anthony Albanese. The Prime Minister said that he will also have the opportunity to interact with the Indian diaspora, which is an important pillar of India-Australia partnership. During his visit, Mr. Modi will participate in the third India-Australia Annual Summit. He will also participate in the India-Australia CEOs Forum, where he will address a gathering of top business leaders from both the countries. India has expressed deep concern over the recent attacks and escalation of tensions in West Asia. The External Affairs Ministry said that these developments risk undermining regional peace, security and stability. India has called upon all parties to exercise restraint to de-escalate tensions and ensure protection of civilians as well as the uninterrupted flow of energy supplies and commerce. New Delhi has urged the parties to return to dialogue and diplomacy to achieve a peaceful and lasting solution to the conflict. This comes after the US carried out a new round of military strikes against Iran, targeting more than 80 sites. On the other hand, Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, said it had responded to the strikes by targeting U.S. assets in neighboring countries as sirens went off in Bahrain and Kuwait. India and Myanmar have discussed bilateral security cooperation and reviewed progress under bilateral dialogue mechanisms. The two-day 23rd national-level meeting between India and Myanmar concluded yesterday in New Delhi. Ministry of Home Affairs said that the two sides discussed cooperation in combating transnational crimes, including terrorism, insurgency.

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 4:11 और 5 सेकंड और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम अरुणिमा का। और अरुणिमा के इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं यानी आपका दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलूस आदाब। दोस्तों कहते हैं कि जिंदगी हर दिन हमें कुछ नया सिखाती है, कभी खुशियों की धूप मिलती है तो कभी मुश्किलों की छांव, लेकिन हर अनुभव हर तजर्बा हमारे सफर को और भी खूबसूरत बना देता है। शायद इसीलिए कहा जाता है कि जिंदगी को सिर्फ समझना नहीं बल्कि जीना भी जरूरी है, और जिंदगी को जीने के लिए सब कुछ सकारात्मक होना बहुत ही अहम है। ऐसा ही एक बेहद खूबसूरत नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं, उसी नगमे से आज के इस सफर का आगाज करेंगे आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और ये नगमा है फिल्म जागते रहो से। फिल्म जागते रहो का ये यादगार नगमा जिसे लिखा है शैलेंद्र ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है सलील।

चौधरी ने। आवाज है मुकेश साहब की और ये ऐसी आवाज है जो दिल को सुकून देने वाली है और हमेशा आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करने वाली ये आवाज है। ये गीत हमें याद दिलाता है कि हिंदी सिनेमा में ये गीत बहुत ही मशहूर हुआ था। ये गीत हमें याद दिलाता है कि जिंदगी में हर लम्हा हमेशा एक जैसा नहीं रहता, इसलिए छोटी छोटी खुशियों की कदर कीजिए, अपनों के साथ बिताए वक्त को सजोएं और हर नए दिन का इस्तकबाल मुस्कुरा कर कीजिए, यही तो जिंदगी की असली खूबसूरती है।

0: सच है क्या सब सच।
1: जी हाँ, जिंदगी ख्वाब है और ख्वाब में झूठ क्या सच क्या। जिंदगी बेहद खूबसूरत है, बहुत ही प्यारी है और इस जिंदगी को हमेशा हंसकर गुजारना हम सब की जिम्मेदारी है। और जब कोई ख़ास आपकी ज़िंदगी में आ जाए तो फिर यह ज़िंदगी और भी खूबसूरत हो जाती है। कहते हैं कि ज़िंदगी की भाग दौड़ में हम अक्सर बड़ी बड़ी खुशियों की तलाश करते रहते हैं, जबकि सुकून तो कई बार छोटे छोटे लम्हों में छिपा होता है। किसी अपने का साथ, भरोसे का एहसास और दिल से निकली एक मुस्कान, यही पल जिंदगी को खूबसूरत बना देते हैं। इसी प्यार जज्बे को अपने सुरों में समेटे हुए हैं ये बेहद खूबसूरत नगमा फिल्म वक्त से। आवाजें हैं आशा जी और महेंद्र कपूर साहब की।

हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए। वक्त फिल्म का ये नगमा आशा जी और महेंद्र कपूर साहब की बहुत ही खूबसूरत आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और ये महफिल है आपकी अपनी पसंदीदा अरुणिमा की। दोस्तों कहते हैं कि जिंदगी भी कितनी दिलचस्प है ना, कभी सीधी राह पर चलाती है तो कभी किसी मोड़ पर नई सीख नई उम्मीद दे जाती है। नए लोग और नई उम्मीदों से मुलाकात करने पर हमें कुछ अलग ही अनुभव होता है, इसलिए हर मोड़ को मुस्कुराकर अपनाइए, क्योंकि कौन सा लम्हा आपके जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद बन जाए कोई नहीं जानता। इन्हीं एहसासात को बेहद खूबसूरती से बयान करता है फिल्म मेरे हमसफर का ये बहुत ही खूबसूरत नगमा, और ये फिल्म आई थी 1970 में। इस नगमे को अपने बहुत ही मधुर आवाजों से सजाया है मुकेश और लता जी ने। इसके बेहद खूबसूरत बोल लिखे हैं आनंद बख्शी साहब ने, और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है कल्याण जी आनंद जी भाई ने। तो आज के इस खूबसूरत सफर को यूं ही बरकरार रखते हुए आगे बढ़ते हैं, इस उम्मीद के साथ कि अगर आज की राह थोड़ी मुश्किल है तो मायूस बिल्कुल ना हो। हर सफर में कुछ मोड़ ऐसे आते हैं जहां से नई मंजिलें दिखाई देती हैं, बस हौसला बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि उम्मीद हमेशा आगे बढ़ने की वजह देती है। और जब ऐसा नगमा हो किसी राह में किसी मोड़ पर, हमें यूं न जाना छोड़कर, मेरे हम सफर मेरे हम सफर। बहुत ही खूबसूरत ये नगमा, जब इसको आप सुनेंगे इसकी गहराई में जाएंगे तो आपको उस दर्द का, उस प्यार का, उस मोहब्बत का एहसास होने लगेगा।

किसी राह में किसी मोड़ पर यूं ही चलने देना छोड़कर मेरे हम सफ़र। लता जी की आवाज़ में और साथी थे मुकेश साहब। बेहद खूबसूरत ये नगमा फिल्म मेरे हम सफ़र से। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर अरुणिमा की इस दिलकश महफिल में। जिंदगी एक ऐसा सफ़र है जहाँ हर दिन हमें कुछ नया सिखाता है। कुछ लोग रास्ते में मिलते हैं, कुछ यादें हमेशा के लिए साथ रह जाती हैं और कुछ पल सिर्फ हमें बेहतर इंसान बनाने के लिए आते हैं। इसलिए गुजरे हुए लम्हों पर अफसोस करने से ज्यादा आज को खूबसूरत बनाना जरूरी है। इसी गहरे एहसास को अपने अल्फाज और सुरों में डालता है फिल्म आपकी कसम का ये बेहद खूबसूरत नगमा। ये फिल्म आई थी 1974 में। इस अमर नगमे को अपने दिलकश आवाज से सजाया है किशोर कुमार साहब ने और इसे लिखा है आनंद बख्शी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है राहुल देव बर्मन साहब ने। दोस्तों, हमें हमेशा यह लगता है कि कोई तो हो हमारी जिंदगी में जो हमें आगे लेकर के जाए, यही उम्मीद होती है। जिंदगी में हर मुलाकात की कद्र कीजिए, हर रिश्ते को मोहब्बत से निभाइए और हर दिन का शुक्रिया अदा कीजिए, क्योंकि वक्त आगे बढ़ता रहता है लेकिन अच्छे रिश्ते और प्यारी यादें उम्र भर दिल को रोशन करती रहती हैं। तो आइए ऐसे ही नगमे के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर अरुणिमा की इस महफिल में। किशोर कुमार साहब की बहुत ही प्यारी आवाज़ में ये नगमा।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फेरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा इस महफिल में जिसका नाम है अरुणिमा। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 4:40 और 32 सेकेंड। दोस्तों कहते हैं कि जिंदगी की खूबसूरती कई बार बड़ी चीजों में नहीं बल्कि उन छोटे छोटे पलों में छिपी होती है जो दिल को सुकून दे जाते हैं और एक अलग एहसास जगा जाते हैं। किसी अपने की मुस्कान, किसी खास इंसान का साथ और एक प्यारा सा एहसास, यही तो वो पल हैं जो आम वक्त को, आम दिनों को भी यादगार बना देते हैं। इसी खूबसूरत एहसास को बयान करता है अगला ये बेहद खूबसूरत कलाम। कहते हैं खुशियां हमेशा किसी बड़ी मंजिल के बाद नहीं मिलती, कभी कभी वो हमारे साथ चल रहे लोगों और उन अनमोल लम्हों में मिलती हैं जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। रिश्तों की कद्र कीजिए क्योंकि यही यादें जिंदगी को खास और खूबसूरत बना देती है। ऐसा ही एक बेहद खूबसूरत गजल है, एक बेहद खूबसूरत ये गजल है जो है फिल्म साथ साथ से, और ये फिल्म आई थी 1982 में। आवाजें हैं हम सब के चहेते जनाब जगजीत सिंह साहब और चित्रा सिंह की। इस गजल को लिखा है जावेद अख्तर साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है कुलदीप सिंह ने। तो आइए इस सफर को यूं ही बरकरार रखते हुए आगे बढ़ते हैं और इस दिलकश एहसास का लुत्फ उठाते हैं।

तुमको देखा तो ये ख्याल आया। जगजीत सिंह साहब की बेहद खूबसूरत आवाजों में ये नगमा था, बल्कि ये एक गजल थी फिल्म साथ साथ से। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर अरुणिमा के इस दिलकश महफिल में जिंदगी में कुछ इंतजार ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ कम नहीं होते, बल्कि हमें धैर्य, उम्मीद और रिश्तों की अहमियत सिखाते हैं। कभी किसी अपने की याद, कभी किसी सपने के पूरा होने की चाह, यही छोटे छोटे एहसासात हमारी जिंदगी को एक खूबसूरत कहानी बना देते हैं। इसी गहरे जज्बात को अपने मधुर धुन और दिल को छू लेने वाले अल्फाज में पेश करता है अगला ये बेहद खूबसूरत कलाम एतबार फिल्म से, और ये फिल्म आई थी 1985 में। एतबार फिल्म का ये बेहद खूबसूरत कलाम, बहुत ही प्यारी ये गजल। उम्मीद इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। कुछ मंजिलें देर से मिलती हैं, लेकिन जो लोग सब्र और हौसले के साथ आगे बढ़ते हैं, उनके लिए हर इंतज़ार एक नई उम्मीद बन जाती है, एक नई सीख बन जाती है। तो आइए इसी बेहद खूबसूरत गजल के साथ हम आगे बढ़ते हैं भूपेंद्र सिंह और आशा जी की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में, जिसे लिखा है हसन कमाल साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से इसको संवारा है, मौसीकी से संवारा है बप्पे लहरी साहब ने।

किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। भूपेंद्र और आशा जी की बहुत ही प्यारी आवाजों में ये गजल थी फिल्म एतबार से। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आपको कैसा लग रहा है हमारा ये प्रोग्राम, हमें जरूर बताइएगा अपने पैगामात के जरिए और अपने ईमेल के जरिए। उसके लिए हमारा ईमेल आईडी है fmgoldairdaily@gmail.com fmgoldairdaily@gmail.com। दोस्तों कहते हैं जिंदगी की खूबसूरती सिर्फ अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने में नहीं बल्कि अपने पसंद उनकी ख्वाहिशों और उनके एहसासात की कद्र करने में है जिसे आप चाहते हैं, जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं। जब रिश्तों में समझ, सम्मान और अपनापन होता है तो साधारण पल भी बेहद खास बन जाता है। ऐसा ही एक बहुत ही खूबसूरत नगमा है फिल्म सफर का। आवाज है मुकेश साहब की और इसे लिखा है इंदीवर साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा है कल्याण जी आनंद जी भाई ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कल ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया की मंत्री क्लेयर ओनील ने प्रधानमंत्री की अगवानी की। इस दौरान प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। बाद में मेलबर्न में आयोजित सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने AR रहमान की प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज उड़ीसा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित उड़ीसा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले समुद्र में मत्स्य पालन के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करने के लिए कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्री राधाकृष्णन उड़ीसा डीप सी फिशिंग मिशन दस्तावेज का भी विमोचन करेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान खुदरा के 15वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज अगरतला में त्रिपुरा व्यापार सम्मेलन 2026 में शामिल होंगे। इस अवसर पर श्री सिंधिया पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवेश, संपर्क, रसद और औद्योगिक विकास को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं और भविष्य की कार्य योजना की रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य क्षेत्र की आर्थिक क्षमता को उजागर करना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि दिल्ली मुंबई

0: केंद्र सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत राज्य में 87,000 मीट्रिक टन से अधिक खोपरा की खरीद की जाएगी, जिसमें 87,000 मीट्रिक टन मिलिंग खोपरा और 226 मीट्रिक टन बाल खोपरा शामिल है। खोपरा की पूरी खरीद मूल्य समर्थन योजना के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर की जाएगी। स्वीकृत खरीद का कुल एमएसपी मूल्य 1000 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना एमआईएस के तहत इस वर्ष तमिलनाडु में 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आमों की खरीद को भी मंजूरी मिल गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सीएसआईआर यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा के लिए अग्रिम शहर सूचना पर्ची जारी कर दी है। ये परीक्षा 17 और 18 जुलाई को आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.csirnet.nta.nic.in से अपनी पर्ची डाउनलोड करने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू की है। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना का शुभारंभ किया। इसके तहत शिक्षकों और उनके परिवारों को 5,00,000 रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। अमरीकी सेना ने कहा है कि वह ईरान पर फिर से हवाई हमले कर रही है। ये हमले एक दिन पहले होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान द्वारा जहाजों पर किए गए हमलों के बाद शुरू हुए हैं। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरानी हमलों से युद्ध विराम समाप्त हो गया है और अमरीका जरूरत पड़ने पर और कार्रवाई करेगा। एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की अंडर 23 महिला मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 9 पदक पक्के कर लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi has arrived in Melbourne, Australia on the second leg of his three-nation visit. He was warmly received by Australian Minister for Housing, Minister for Homelessness and Minister for Cities, Claire O'Neill, upon his arrival yesterday. The Prime Minister said this visit will add vigour to the India-Australia Comprehensive Strategic Partnership. In a social media post, Mr. Modi said that he looked forward to the talks with his Australian counterpart, Anthony Albanese. The Prime Minister said that he will also have the opportunity to interact with the Indian diaspora, which is an important pillar of India-Australia partnership. During his visit, Mr. Modi will participate in the third India-Australia Annual Summit. He will also participate in the India-Australia CEOs Forum, where he will address a gathering of top business leaders from both the countries. India has expressed deep concern over the recent attacks and escalation of tensions in West Asia. The External Affairs Ministry said that these developments risk undermining regional peace, security and stability. India has called upon all parties to exercise restraint, de-escalate tensions and ensure protection of civilians as well as the uninterrupted flow of energy supplies and commerce. New Delhi has urged the parties to return to dialogue and diplomacy to achieve a peaceful and lasting solution to the conflict. This comes after the US carried out a new round of military strikes against Iran, targeting more than 80 sites. India and Myanmar have discussed bilateral security cooperation and reviewed progress under bilateral dialogue mechanisms. The two-day 23rd national level meeting between India and Myanmar concluded in New Delhi yesterday. Ministry of Home Affairs said that the two sides discussed cooperation in combating transnational crimes, including terrorism, insurgency, narcotics trafficking, arms smuggling, human trafficking, wildlife trafficking, cybercrime and other forms of organized crime. The Indian Space Research Organization, ISRO, has successfully conducted a critical integrated main parachute airdrop test, IMAT, for the Gaganyaan missions at the Aerial Delivery Research and Development Establishment, ADRDE, drop zone in Shyopur, Madhya Pradesh. ISRO said that the objective of the test was to qualify the main parachute for its structural integrity and design margins under the maximum expected load conditions in the first uncrewed Gaganyaan G1 mission. India is holding on to its crown as the world's fastest growing major economy, with the International Monetary Fund, IMF, projecting it to grow at 7% during the current calendar year. IMF

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 5:11 और 8 सेकंड और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम भोर सुहानी का। और भोर सुहानी की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं यानी आपका दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलूस आदाब। और दोस्तों कहते हैं कि रात कितनी भी गहरी हो सवेरा जरूर आता है, मुश्किलों के बाद ही इंसान को नया रास्ता नजर आता है। क्योंकि जब आप मुश्किल हालात में होते हैं तभी आप सबसे बड़े विद्वान साबित होते हैं, जब आप उन मुश्किल हालात को बड़ी ही खूबसूरती से अपनी मेहनत अपनी लगन और अपनी चतुराई से उससे बाहर निकालते हैं। आप जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, बहुत सारी परेशानियां आती हैं, मंजिल पाने में बहुत सारी कठिनाइयां रास्ते में आती है, लेकिन उसका डट कर जो मुकाबला करता है वही सच्चा योद्धा होता है। और दोस्तों हर सुबह हर दिन हम इस नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं कि आने वाला दिन हमारा अच्छा हो, आने वाला वक्त हमारे लिए बेहतर हो। इसी उम्मीद के साथ हम जिंदगी की शुरुआत करते हैं हर दिन हर नई सूरज की रोशनी के साथ। और हर दिन का आगाज हम उस खुदा के नाम से, उस ईश्वर के नाम से करते हैं जो सर्वशक्तिमान है। वही सब कुछ करने वाला है, वही हमें देने वाला है, वही हमें जिताने वाला है, वही हमें आगे बढ़ाने वाला है। इसलिए हम जो भी काम करते हैं उस ईश्वर उस खुदा उस गॉड के नाम से करते हैं।

जो सर्वशक्तिमान है, और उन्हीं से दुआ करते हैं कि हमारी मुश्किलों को आसान कर दे और हमें तमाम परेशानियों से बाहर निकाल दे। ऐसा ही एक बहुत ही खूबसूरत नगमा है फिल्म पैगाम का, मोहम्मद रफ़ी साहब की दिलकश आवाज़ में, आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। इसी नगमे के साथ हम आगे बढ़ेंगे भोर सुहानी की इस दिलकश महफिल में।

मुश्किलें आसान कर दे ऐ खुदा। जी हाँ, जिंदगी का सफर हमेशा आसान नहीं होता, कभी रास्तों में मुश्किलें आती है तो कभी हालात हमारे हौसले को परखते हैं, लेकिन यही चुनौतियां हमें मजबूत बनाती है और आगे बढ़ने का जज्बा देती है। इसीलिए हम हर सुबह कोई भी काम करते हैं तो उस खुदा के नाम से, उस ईश्वर के नाम से शुरू करते हैं। हर दिन का आगाज हम ऐसे ही करते हैं, लेकिन कहते हैं ना, समय बहुत ही बलवान होता है। समय, वक्त एक ऐसा आईना है जिसमें हमारी जिंदगी के हर पल की तस्वीर दिखाई देती है। कुछ लम्हे हमें मुस्कुराहट देते हैं, कुछ हमें सीख देते हैं और कुछ हमें पहले से बेहतर इंसान बना जाते हैं। इसलिए गुजरे हुए कल का अफसोस करने के बजाय आज को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इसी खूबसूरत सोच के साथ हम भी आगे बढ़ेंगे एक और बहुत ही खूबसूरत नगमे के साथ। आवाजें हैं आशा भोसले जी और सुरेश वाडेकर की। कहते हैं, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो इंसान हर अनुभव से सीखता है वो हर दिन अपनी जिंदगी को और खूबसूरत बना सकता है। बीते हुए पल यादों का हिस्सा है, लेकिन आने वाले पल हमारी उम्मीद की कहानी लिख सकते हैं। तो आइए आप भी महसूस कीजिए इस पल को और इस जिंदगी के बेहद खूबसूरत सफर को आगे बढ़ाइए भोर सुहानी के साथ।

दोस्तों कहते हैं कि जिंदगी सिर्फ अपने लिए जीने का नाम नहीं बल्कि दूसरों के चेहरों पर मुस्कान लाने का भी नाम है। जब हमारी छोटी सी कोशिश किसी के जीवन में खुशी भर देती है तो वही पल हमारी जिंदगी को और भी खास बना देता है। कहते हैं इंसान की असली पहचान उसके पास मौजूद चीजों से नहीं बल्कि उसके दिल की नेकी और उसके व्यवहार से होती है। प्यार, मदद और अपनापन बांटने से जिंदगी में एक अलग ही सुकून मिलता है। जिंदगी का असली आनंद तब मिलता है जब हमारी खुशियों में दूसरों की मुस्कान भी शामिल हो। अपने सपनों को पूरा कीजिए लेकिन साथ ही अपने आसपास के लोगों के लिए भी प्यार और खुशियों की वजह बनिए। ऐसा ही

बेहद खूबसूरत नगमा है बादल फिल्म का, अपने लिए जिए तो क्या जिए। मन्ना डे साहब की बहुत ही खूबसूरत आवाज में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर भोर सुहानी की इस दिलकश महफिल में आपके लिए।